103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम शिमला। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 6 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:10 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांचलि। माता रानी सबकी रक्षा करती है। माँ के यश का गायन करने से दुख और दरिद्रता निकट नहीं आती।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। राम नाम में वो शक्ति है जो हर मन को शांति और हर जीवन को नई दिशा देती है।

कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं मानस कान।

पुण्यात्मा काकभुशुंड के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, मायाजनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंड ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण्ण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंड के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंड हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आपने ट्यून किया है एफएम शिमला. लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस.
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा. प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं. प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे. 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे. 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं. उन्होंने कल कांगड़ा जिला के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की. सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है. लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही की

0: खोलने के आदेश दे दिए हैं। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: हिंदी में समाचार के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और

0: लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05

0: 42 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।

शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करे। ढूंढते ढूंढते आखिर उनको शबर जाति का एक लड़का मिल गया। माँ बाप ने रात में शबरी का विवाह करके उसको रातों रात ही विदा कर दिया। आगे आगे लड़का चल रहा था, पीछे पीछे शबरी चल रही थी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुंचे। वहां सूर्य उदय हो गया। लड़के के मन में आया कि देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी है। उसने पीछे मुड़कर शबरी को देखा तो उसकी कुरूपता देखकर वो डर के मारे वहां से भाग गया। अब शबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। वो पीहर से तो आ गई और ससुराल का पता नहीं, अब वो कहां जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वहां मतंग नाम के एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने शबरी को देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी बात मानी नहीं। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक शबरी से कहा, बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रह जाओ जैसे कोई माँ बाप के पास रहे। ऐसे शबरी वहां खुशी से रहने लग गई। शबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार किया करते थे, इसलिए वो छिपकर डरते डरते उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सो जाते तब जिस रास्ते ऋषि लोग स्नान के लिए पंपा सरोवर जाते थे वो रास्ता बुहार कर साफ कर देती। जहां कंकड़ पत्थर होते वहां बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती। अगर कोई देख लेता तो वहां से भाग जाती। वो डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, ऐसे ही शबरी रोने लगी। रोने के सिवा वो और क्या कर सकती थी। मृत्यु से पूर्व मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है, इसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वो इतना सजीव साधन नहीं होता, निर्जीव सा होता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधना होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी बाहर आकर देखती कि कहीं राम तो नहीं आ गए। प्रतिदिन वो कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती, तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी चखकर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताजे फल लाकर रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, हम तो शबरी की कुटिया में ही जाएंगे। जैसे शबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी है, ऐसे ही भगवान के मन में शबरी से मिलने की उत्कंठा लगी है। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसे भजता है वे भी उसको वैसे ही भजते हैं। शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही, वो भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बिठाया, फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगे। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे शबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगे और राम जी बड़े प्यार से उनको खाने लगे।

एफएम शिमला पर डॉक्टर हुकुम शर्मा से अभी आपने चिंतन सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7:10 हुए हैं, तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप एफएम शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। एफएम न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं सुबह 9:20, 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे सुबह 8:00, दोपहर 12:00, 1:00, 2:15, रात 8:45 और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15, दोपहर 12:05, 1:05, शाम 7:05, रात 9:00 और रात 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:32, 11:30, दोपहर 2:30 पर शिखरों के स्वर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45, 10:00, दोपहर 12:10, 4:00, रात 8:30 और दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। ग्यारह बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। 1:10 पर समय रहेगा म्यूजिक मस्ती का। सबरंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:00।

युववाणी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 3:30 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 4:20 पर आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम। मंडियाली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 4:50 पर। 5:20 पर आप सुनेंगे पंगवाली कार्यक्रम। छह बजकर 5 पर आप सुनेंगे कांगड़ी कार्यक्रम। महाश्वी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:35 पर। हर रोज की तरह आज भी शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। भूले बिस्तरे गीत आप सुनेंगे रात 8:00। एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। पहाड़ों की वादियों में घुलती सुबह की ताजगी और मौसम की प्यारी सी ठंडक के साथ शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। इस सफर में आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा है आपके साथ, लेकर कुछ बातें, मुस्कुराते एहसास और बेहतरीन गीतों का खूबसूरत सफर। दोस्तों, हर सुबह हमें ये मौका देती है कि बीते कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें। इस खूबसूरत सुबह को दिल से महसूस करें और दिन की शुरुआत करें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मुस्कान सिर्फ चेहरे की पहचान नहीं होती, ये दिल की खुशी और आत्मविश्वास की सबसे खूबसूरत आवाज़ होती है।

मैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, शिमला, श्रोताओं, आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत में आप सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, ट्रैफिक चलान, बैंक ऋण मामले तथा पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का त्वरित समाधान पा सकते हैं। लोक अदालत का है यही आधार, ना किसी की जीत ना किसी की हार। धन्यवाद।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। तकनीक बदल गई, वक्त बदल गया, लेकिन रेडियो से जुड़ी यादों की मिठास आज भी वैसी ही है। इन सब के बीच एफएम रेडियो की अपनी एक अलग ही पहचान और अपनापन है। सुबह ऑफिस जाते समय, सफर के दौरान या फिर घर में काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए एफएम हमेशा साथ चलता रहता है। और देखिए, कई बार एफएम पर जब कोई गाने बजते हैं तो अचानक ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है सुनते सुनते। एफएम सिर्फ गाने सुनाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, उनकी यादों, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक खूबसूरत साथी है। यही वजह है कि बदलते दौर में भी एफएम की दुनिया आज उतनी ही खूबसूरत और दिल के करीब महसूस होती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए एफएम शिमला के साथ, क्योंकि यहाँ हर धुन में है अपनापन और हर बात में है दिल से जुड़ा एहसास।

जी हाँ, आप भी सारे गमों को भूल जाइए और सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है 9 मई सन 2026। भारत और विश्व इतिहास में आज के इस दिन का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। वैसे तो देखिए हर दिन ही अपने आप में खास होता है, लेकिन हम बात करेंगे आज के इतिहास की। ४९४५ में रूस में विजय दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की याद में ये दिन रूस में मनाया जाता है। पुर्तगाल इंग्लैंड संधि 1386 दुनिया की सबसे पुरानी संधियों में से एक विंडसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज का दिन समर्पित है एक ऐसे वीर योद्धा को जिनकी वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, जिनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ।

जिंदगी एक जंग है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जिंदगी हर दिन हमें किसी न किसी मोड़ पर परखती है। कभी हालात से लड़ाई होती है, कभी अपने डर से और कभी अपने ही विचारों से। जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी हार मानने की बजाय डटे रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो इंसान इस जंग को मुस्कुराकर लड़ता है वही असली योद्धा कहलाता है, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर हार के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। जिंदगी एक जंग है और यहाँ हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है, और जो खुद को जीत ले वही असली विजेता कहलाता है।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला। जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत होती है तो वो है परिवार। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी शर्त के हमारे

साथ खड़ा रहता है। जब हम खुश होते हैं तो परिवार हमारी खुशी को और बढ़ा देता है, और जब हम मुश्किल समय आता है तो यही परिवार हमारा हौसला बढ़ा देता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दिन के आखिर में इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून अपने परिवार के साथ ही मिलता है। घर की छोटी छोटी बातें, साथ बैठकर खाना खाना, हंसी मजाक और सबसे बड़ी बात कि अपनों का साथ, यही वो पल है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपके पास भी परिवार का साथ है तो समझ लीजिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। इसलिए अपनों को वक्त दीजिए, उनकी बातें सुनिए, हर रिश्ते को दिल से निभाइए, अपनों का ख्याल रखिए और जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों को दिल से जीते रहिए। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए।

जी हाँ, अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, दिल का रिश्ता हमेशा बना रहता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनों का साथ होता है, क्योंकि अपने दर्द भी समझते हैं और खुशी भी। जिंदगी की भीड़ में वही लोग खास होते हैं जो बिना कहे हमारा हाल समझ जाते हैं।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता और जिंदगी भी हर दिन नए रंग दिखाती है। बारिश, धूप, ठंडी हवाएं जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन के हालात भी बदल जाते हैं।

0: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। तो चलिए आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। दस बजे आप सुनिएगा फिल्म संगीत, पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश होगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। म्यूजिक मस्ती का समय रहेगा 1:10। पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 22 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए तय सही सीमा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्ष और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों को निपटाया जाएगा। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाश।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 8 बजने को है, समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
4: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकाय योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
4: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
2: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस

रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य

0: सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरेह बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी

0: आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मैं कौशल्या शर्मा। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दिशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश में एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, रखरखाव समेत अन्य कार्यों का जिम्मा प्रदेश सरकार को सौंप दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद व पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए तय सही समय सीमा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व स्वतंत्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने दारचा शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश दिए हैं। हिमालयी क्षेत्रों की पक्षी विविधता गणना का अभियान आज प्रदेश के सभी जिलों में आरम्भ होगा। अभियान में वन अधिकारियों के साथ स्कूली छात्र, प्रकृति व पक्षी प्रेमी व स्थानीय समुदाय के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी अपनी जानकारी ई बोर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। ये थी अब तक की FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
2: वन जीरो 3.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश है लोक संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए विद्या देवी को।

0: लोक संगीत में अभी बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगी नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

0: इस पे आएगी।
1: बंटी और बबली इस फिल्म में अभी आपने शंकर महादेवन, सौम्या राव और साथियों को सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार शंकर एहसान लॉय। कृष्णा के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए राजशेखर का लिखा गीत। आवाज है लैम्बर हुसैनपुरी की। फिल्म का नाम है तन्नू वेड्स मन्नू।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। पार्टनर फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें हैं वाजिद लाभजन जुआ और स्नेहा पंत के। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार साजिद वाजिद।

जिस रफ्तार में गाने सुन रहे हैं तो ज़िंदगी की रफ्तार को भी बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने काम को भी पूरे जोश के साथ करते रहिए, क्योंकि संगीत और मेहनत दोनों मिल जाएं तो दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। धूम 2 फिल्म का

0: ड्रीम गर्ल टू फिल्म में लीजिए सुनिए नक्श अजीज को, गीतकार हैं शान यादव, संगीतकार तनिष्क बागची।
1: When you hear the rhythm, start to move.

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। तो चलिए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। 10 आप सुन सकते हैं रिमझिम। लोक संगीत आप सुनेंगे 11:05, 2:30 पर हिमगुंजन, रात 8 धारारे गीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 11:30, 12:10, 2:45, रात 8:15 पर। 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनते हैं 1:10 पर। 2 आप सुनेंगे सुनहरी किरणें। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात 8:30 पर। रात 9:15 पर आप सुनेंगे हिमदर्शन प्रादेशिक न्यूज रील। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती रात 9:30 पर और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। यह हैं आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा

0: सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिमी बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
0: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए सिरमौर जिला में दूसरे दिन बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 7, 8 और 11 मई नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है और अंतिम दिन और अधिक नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है।
2: याद है कि आज दूसरा दिन था नॉमिनेशन का, और अगर मैं इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज लाऊं, बिकॉज हमारे जिला सिरमौर में टोटल 8 ब्लॉक हैं, तो टोटल अब तक जिला परिषद के हमारी 29 नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं। पंचायत समिति की हमारी टोटल 198 नॉमिनेशंस फाइल हुई हैं, तो टोटल 703 लोगों ने प्रधानी के लिए अपनी नॉमिनेशंस फाइल की है। उप प्रधान टोटल मैं बताऊँ 536 और वार्ड मेंबर्स के लिए टोटल 1240 तक नॉमिनेशंस फाइल हुई है। तीसरा दिन हमारा जो आखिरी दिन होगा नॉमिनेशन फाइल करने का, वो 11 तारीख होगी मंडे।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @

0: AIR न्यूज अंडरस्कोर शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिसे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इन देशों में विश्व के करीब 68% किसान रहते हैं। ये सम्मेलन 2 चरण में आयोजित होगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 11 जून तक चलेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ईबर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर सकेंगे। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हुआ। कोर्सेरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऊना में खैर कटान मामले में SIT गठित कर नए सिरे से जांच के आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण पर दिए झूठे आश्वासन पर मुख्य सचिव तलब। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुक्खू सरकार ने आम लोगों के लिए खोले सभी सर्किट हाउस। पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं, हिमाचल में पहली बार मतगणना केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कचरा फैलाने वाले होटलों, उद्योगों व संस्थानों के बिजली पानी कनेक्शन काट सकेंगे DC। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, जिला परिषद और BDC अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता समाप्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और हम इस सफर के मुसाफिर हैं जो अपने अपने मंजिल की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन इस जिंदगी में फुर्सत के अगर चार दिन भी हम खुशी खुशी हंसते खेलते गुनगुनाते गाते हुए किसी यात्रा पर चले जाएं तो दिल को सुकून सा मिलता है, क्योंकि यात्राएं सिखाती है, दिमाग की खिड़कियां खोलती हैं, ज्ञान के नए चंवर डुलाती हैं और बदलाव की वाहक होती हैं।

देखिए, ज़िंदगी एक सफ़र ही है और कल क्या हो किसी को कोई मालूम नहीं है, इसलिए जो पल है उसे अच्छे से जी लें। घूमने के साथ साथ गीतों का आनंद लेना सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। रास्तों की रफ्तार, मौसम की मिठास और मनपसंद गीत, यही तो हर यात्रा की असली पहचान होती है। कभी पहाड़ों की वादियों में, कभी बारिश की फुहारों में, संगीत हर पल को यादगार बना देता है। तो आप भी मुस्कुराते रहिए, सफ़र का आनंद लीजिए और सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: मैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, शिमला, श्रोताओं, आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत में आप सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, ट्रैफिक चलान, बैंक ऋण मामले तथा पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का त्वरित समाधान पा सकते हैं। लोक अदालत का है यही आधार, न किसी की जीत न किसी की हार। धन्यवाद।
1: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। कुदरत के रंग भी बड़े निराले हैं और संगीत के सुर भी बड़े प्यारे हैं। जब सुबह की ठंडी हवाओं में कोई मधुर गीत गूंजता है तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट और गीतों की मीठी धुनें मिलकर हर पल को यादगार बना देती है। कुदरत और संगीत दोनों ही जिंदगी को सुकून, खुशी और नई ऊर्जा से भर देते हैं।

कुदरत की खूबसूरती सिर्फ आंखों से देखने की चीज़ नहीं बल्कि दिल से महसूस करने का एहसास है। पहाड़ों पर उठते बादल हों या गांव के खेतों में लहराती फसल, कुदरत हमें सिखाती है कि जीवन में हर रंग का अपना महत्व है। इससे जुड़ाव हमें शांति देता है, मन को सुकून देता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पूजनीय माना क्योंकि यही जीवन का आधार है। आज के दौर में जहां तकनीक ने हमें आगे बढ़ाया है, वहीं हमें ये भी याद रखना होगा कि कुदरत की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। हमें कुदरत से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें सुकून, ताजगी और जीवन की असली खुशी देती है। जब हम कुदरत के करीब होते हैं ना, तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। इसलिए थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए।

0: कार्यक्रम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं कौशल्या शर्मा। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल में पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया है। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश की सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हुआ। सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्ययोजना तैयार करेंगे ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, रखरखाव समेत अन्य कार्यों का जिम्मा प्रदेश सरकार को सौंप दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश की सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। ये थी अब तक की एफएम न्यूज हेडलाइंस। कल सुबह 6:57 पर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगा

संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। आवाज है उदित नारायण की, फिल्म का नाम है मन।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में लीजिए सुनिए जानवर फिल्म का ये गीत। बोल हैं समीर के, तर्ज दी है आनंद मिलिंद ने।

जानम समझा करो। इस फिल्म में अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना। लीजिए अब सुनते हैं कुमार सानू के साथ सुनंदा को। फिल्म का नाम है ये प्यार ही तो है।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत अजनबी। इस फिल्म में लीजिए सुनते हैं कुमार सानू और सुनिधि चौहान को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक।

एफएम शिमला पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अग्नि साक्षी फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत में आखिरी गीत ओम शांति ओम फिल्म से है, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अभिजीत ने। बोल हैं जावेद अख्तर के, तर्ज दी है विशाल और शेखर ने।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। अपनी रेडियो हमसफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज़ के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि टैगोर की रचनाएं मानवता, भाईचारे और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। गीतांजलि ने मानवता और अध्यात्म को नई राह दिखाई, जबकि जन गण मन ने देश की एकता और सम्मान को स्वर दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
3: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
2: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा

0: प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिससे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: 103.7 MHz पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
5: हर खुशी अब लगे नमी,
4: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

एफएम शिमला पर अब वक्त है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। मोहब्बत का कोई रंग नहीं, फिर भी वो रंगीन है। पुराने गानों की तरह आज भी वो हसीन है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत अजनबी फिल्म के इस गीत के साथ।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत यादों की बारात फिल्म से आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज में।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं पुराने फिल्मों से कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जुगनू फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना
2: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
3: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी नियमों शर्तें लागू।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला। एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे पहाड़ी संगीत। देवभूमि हिमाचल, जहां की हवाओं में रूहानियत है, नदियों में गूंज है, संगीत है और पहाड़ों की चोटी पर ईश्वर का वास है। लेकिन इस देवभूमि की असली आत्मा बसती है यहां के लोकगीतों में। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला लोकगीत हीरालाल कौशल की आवाज में।

अभी आपने सुना खूब राम धीमान की आवाज़ में ये लोकगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत में आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि

0: देव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Sovendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the Chief Minister. The Governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudi Ram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shopot koritechi je, bidhi dara sthapito, Bharater Sangbidhaner proti, Ami okritrim nishtha o anugotto poshon koribo. আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh were also present with several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states on the occasion. Earlier, Prime Minister held a roadshow before reaching the brigade ground. Rabindra Jayanti is being celebrated today on Pochisho Boishak, marking the 165th birth anniversary of Rabindranath Tagore. Cultural functions are held globally with major celebrations at Shantiniketan, Vishwa Bharati University and throughout the West Bengal and Bangladesh, featuring Rabindra Sangeet, poetry, dance and drama. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have offered tributes to Gurudev Rabindranath Tagore on the occasion of Pochisho Boishak. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

पार्टनर मूवी के इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यूनिंग है FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, हमारे ये कार्यक्रम आप FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन। आज के हम सफर, मैं आशा ठाकुर
1: और मैं उमा ठाकुर, आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। देखिए उमा, आज के समय की अगर हम बात करें तो आज का समय कुछ ऐसा है कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में सफल होना चाहता है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है।
1: बिल्कुल, और देखिए ना आशा, कई बार जो है रास्ते में जो हमारे जब हम संघर्ष करते हैं तो कई चुनौतियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं और इससे हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में बहनों, हम सभी को ये कोशिश करनी है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहना है, और अगर आपको राह में कोई कठिनाई भी आए तो उस मुश्किल को पार पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है।
0: बिल्कुल, और बहनों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं और हर असफलता को जो है सीख में बदल देते हैं तो मन की वही निराशा जो हमें कहीं जीवन में पीछे की ओर धकेल रही थी, वही निराशा हमारे विकास का आधार भी बन जाती है।
1: जी, और जब हम खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं तो हर असफलता को सीख में हम बदल सकते हैं, और जो हम गिरकर जब हम संभलना सीखते हैं और वही जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारी प्रेरणा बनता है, और ये जो हम जो सफल लोग हैं उनकी जीवनी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में असफलता का सामना किया। हर बार वो गिरकर संभले भी और कोशिश करना उन्होंने छोड़ा नहीं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उमा कहते हैं ना कि जो असली प्रेरणा होती है वो तो हमारे मन के भीतर होती है, हमारे अंदर होती है, और कभी कभी क्या होता है बहनों की छोटी छोटी जो असफलता होती है वो भी हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा कर देती है, तो ऐसे में हम अपने लक्ष्य से कभी कभी भटकने भी लग जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं ना तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है अपना लक्ष्य ही बदल दें, बल्कि ये एक संकेत होता है कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं जीवन में, या आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना आशा कि हम अपने लक्ष्य को बिना किसी तैयारी के हम अपने लक्ष्य को चुन तो लेते हैं, लेकिन ये हम कहीं ना कहीं मंथन नहीं करते कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत

0: जरूरी है। हमें अपने आप को आत्मचिंतन करना है सबसे पहले तो, कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी रुचि है और आप कितना उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो इसी आधार पर आपको अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को चुनना है।
1: और वैसे भी जीवन तो सीखते रहने का नाम है, चलते रहने का नाम है बहनों, इसीलिए निराश और हताश होने के बजाय इसे एक सामान्य प्रक्रिया की तरह हमें लेना चाहिए। जब हम अपने कामों को जो है कोई भी काम जब हम करते हैं, जब उन्हें हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार करते हैं, तो सब कुछ पहले से ज़्यादा आसान और व्यवस्थित हमें लगने लगता है। और इससे क्या होता है कि इससे जो बेवजह का तनाव है वो भी ज़िंदगी में कम हो जाता है और हम सही समय पर सही काम पर ध्यान दे पाते हैं।
0: बिल्कुल, और हर दिन एक नई शुरुआत है बहनों, और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत जो है हमें ज़रूर सफलता की ओर ले जाती है। और जीवन में असफलता से आपको हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है, जैसे हमने पहले कहा बहनों से, और उन कारणों को ढूंढना है कि किस वजह से आप जो है असफल हो रहे हैं, उस आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई है या फिर आपने कोशिश करना छोड़ दिया है, तो इन सब बातों पर आपको आत्ममंथन करना बेहद ज़रूरी है।
1: और फिर आप जो है दुगनी ताकत के साथ और मेहनत के साथ फिर से कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी।
0: बिल्कुल, और कहते भी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। यूं ही उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: जी, तो इससे हम सीख लेकर, अगर एक छोटी सी नन्ही सी चींटी भी हमें इतनी बड़ी सीख दे सकती है जीवन की, इसे सीखकर हम जीवन को क्यों ना अपने सफल बनाएं और आगे बढ़ें। और उमा, इस वक्त हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सखियों को एक गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, देखिए हमें बहनों का भी, उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखना है, तो जानकारी के साथ साथ जो है मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। बहनों को सुनाते हैं ये गीत
1: और हम भी सुनते हैं।
0: जी,

0: देखिए बहनों, वक्त की एक खासियत है कि वो कभी भी एक सा नहीं रहता और कभी भी कहीं ठहरता नहीं है। एक समय था उमा, जब गली मोहल्ले में डाकिये की साइकिल की घंटी सुनकर अंदाजा हुआ करता था कि चिट्ठी आई है जी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चलन भी कुछ बंद सा हो गया है
1: जी। आशा, देखिए मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रही हूँ कि आज हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो है कहीं ना कहीं डाकिये की वो आवाज़, जिसे सुनकर जो घर परिवार है वो माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता था। जब घर में चिट्ठी आती थी ना, तो पूरा परिवार, पूरा घर का, जो गांव की अगर बात करें तो पूरा गांव उस चिट्ठी का इंतज़ार करता था। ख़ास करके जब वो चिट्ठी सरहद पार किसी बेटे की आती थी तो सभी लोग बहुत खुशी से उस चिट्ठी को पढ़ते थे। एक जो आत्मीयता थी वो बहुत सभी के साथ बरकरार थी।
0: जी हाँ उमा, वो भी एक दौर था जब चिट्ठियों को सूचना के आदान प्रदान का मुख्य जरिया माना जाता था। परिवार का हालचाल जानने के लिए, मित्रों और रिश्तेदारों का कुशल क्षेम जानने के लिए पत्रों का ही हमेशा प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अपनों के हालचाल जानने का एकमात्र जो माध्यम था वो पत्र या खत ही थे
1: जी। और लोग जो है बेसब्री से चिट्ठी का इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि वे केवल शब्दों का पुलिंदा नहीं होती थी बल्कि भावना का एक विस्तृत दस्तावेज हुआ करती थी।
0: बिल्कुल, वो दौर अपने आप में अनूठा था बहनों। चिट्ठी में छुपी हुई आत्मीयता, संवेदनशीलता और वो जो अपनेपन का स्पर्श था, वो आज भी दिल के किसी कोने में जीवित है।
1: जी, और चिट्ठियों का दौर संवेदनाओं और मानवीय रिश्तों का दौर था, और आज के समय में इसका चलन हम देखते हैं बहुत कम हो गया है, लेकिन जो उनकी उपयोगिता है ना, आज भी उतनी ही बरकरार है।
0: बिल्कुल, आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, और इस दौर में पत्र लिखने का चलन, जैसा हम कह रहे हैं कि खत्म सा हो गया है, लेकिन चिट्ठियों में जो ठहराव हुआ करता था ना, और जो उसमें शब्द लिखे जाते थे, जो शब्द लिखने वाला या चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति होता था, वो अपनी पूरी भावनाएं, संवेदनाएं उस चिट्ठी में डाल देता था, और वो जो ठहराव है वो आजकल की भागदौड़ में कहीं खो सा गया है
1: जी। और हम भागदौड़ भरी जिंदगी में

0: इतना खो गए हैं जो रिश्तों की अहमियत तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम जो है चिट्ठियाँ तो दूर, आजकल तो देखिए सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो उसमें सुबह सुबह हम मैसेज भेज देते हैं या फिर कुछ अगर हमें कुछ कहना हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि दूसरों से बातचीत, फ़ोन पर भी बातचीत बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसे में जो संवेदनाएँ हैं वो कहीं जो है कम हुई है, और रिश्तों की जो मिठास है अगर उसको बरकरार रखना है तो रिश्तों की डोर को सहेज कर रखने के लिए चिट्ठियां ना सही, हमें आपस में बातचीत तो जरूर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, वो दौर लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हाँ उस दौर को जो है हम अपनी कोशिशों से थोड़ा सा फिर से जी सकते हैं एक बार।
0: जी, और बात करें अगर युवाओं की या फिर जो घर में बच्चे हैं उनको भी चिट्ठी के महत्व को हमें ज़रूर समझाना है। और खत लिखने के लिए आज देखिए हम स्मार्टफोन पर ही निर्भर है, और हमने अपने जो है इसके लिए भावनाओं को वक्त जो है बहुत कम हो रहता है। अगर हम कभी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कुछ हम दूसरों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो चिट्ठी में जो मिठास थी ना, हम यही कहना चाहते हैं जो चिट्ठी का दौर था वो अपने आप में बहुत ही खास था।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हम देखें ना तो आज हम एक लाइन के टेक्स्ट में या फिर इमोजीज जो होते हैं ना उस पर
0: जी
1: निर्भर हो गए, वो भेज देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा काम हो गया और हमने जो है अपनों का कुशल क्षेम जान लिया, अपनों का दर्द जान लिया, दुख दर्द बांट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज की खासकर हम युवा पीढ़ी की जब बात करते हैं उमा,
0: जी
1: तो अगर युवा पीढ़ी से आज पूछा जाए तो उनके आजकल के बच्चों से अगर पूछा जाए कि डाकघर या डाकिया या फिर उस समय पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशीय पत्र होते थे, इन सब के बारे में अगर पूछा जाए तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या होता है,
0: जी
1: क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो आजकल के जो बच्चे हैं वो या युवा पीढ़ी है वो पत्र लिखना ही नहीं जानती है, किसी से अगर उन्हें बात करनी हो तो केवल एक नंबर वो डायल करते हैं उसकी ज़रूरत होती है, या व्हाट्सएप है, या मैसेज के चलन से आपसी रिश्तों की जो मिठास है उसको हम बरकरार रखना तो चाहते हैं, रख भी रहे हैं, लेकिन वो बात जो खत में होती थी वो शायद इनमें नहीं हो रही है।
0: जी तो देखिए इसके लिए हम जो अभिभावक है, बड़े बुजुर्ग है, उन सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, हमारी जो नैतिक मूल्य है या फिर हमने जो कुछ भी देखा है, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं चिट्ठी के महत्व के बारे में भी, कि किस तरह से जब चिट्ठी आती थी तो गांव में, शहर में या घर परिवार में क्या माहौल रहता था। जब हम उनको बताएंगे तो वो ज़रूर चिट्ठी के महत्व को भी समझेंगे। और आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो रिश्तों की अहमियत, किस तरह से रिश्तों की डोर को सहेज कर रखना है, वो भी हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना है।
1: तो देखिए उमा, बातें करते करते हमने तो वो दौर जी लिया एक बार फिर से,
0: जी
1: और हम तो यही कहेंगे कि बेशक पत्रों का वो दौर जो है वो दोबारा नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसे इतिहास में दर्ज कराकर बच्चों को इसका महत्व तो बताया ही जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि ये जो खत होते हैं, ये जो चिट्ठियां होती हैं, वो केवल कागज़ पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि हमारी विरासत का एक हिस्सा है। कभी वो एक खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, कभी वो दुख की बाढ़ भी ले आते हैं,
0: जी
1: लेकिन अपनों का हालचाल जानना है, अपनों के करीब रहना है, तो ये सब बातें, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें ढालना होगा, शामिल करना होगा, क्योंकि खत जो है वो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है जैसा हम कह रहे हैं, वो हमारी विरासत का हिस्सा है।
0: जी
1: और अब जो हम बात करने जा रहे हैं उमा, हम बात नहीं करने जा रहे, हम गीत सुनवाने जा रहे हैं सखियों को, और उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया है,
0: जी जी बिल्कुल
1: तो सुना जाए।
0: जी

0: उमा वापिस लौट आई है, गीत खत्म हो चुका है और आप तो उस दौर में ऐसे खो गई थी मानो वो दौर फिर से जी रही हूँ।
1: जी बिल्कुल, देखिए चिट्ठियों का वो दौर और गाने में भी चिट्ठी का जिक्र, तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे।
0: बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस इसी में समाये रहे
1: जी।
0: लेकिन आपको याद है ना कि कार्यक्रम चल रहा है और सखियों से अभी बातें बहुत सारी करनी है।
1: बिल्कुल, उन्हें बताना है कि हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, जिंदगी का हर पल इम्तिहानों से भरा होता है और कदम कदम पर देखिए रुकावटें मुश्किलें का जो है हमें सामना तो करना ही पड़ता है, और मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है आशा कहीं ना कहीं, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करने वालों को ही सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल उमा, क्योंकि ये जो जीवन है इसमें बहनों सारा खेल हमारे दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण हमारा अच्छा है, उत्तम है, तो जो बेकार सी पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनमें भी हमें बहुत अच्छे परिणाम नज़र आते हैं
1: जी।
0: और जैसे हम कहते हैं ना कि ये जल गंदा है तो हम इसे पी नहीं सकते, लेकिन उसे पिया नहीं जा सकता, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अगर अच्छा होगा, उत्तम होगा, तो हम ये देख पाएंगे, ये जान पाएंगे कि उसे पीने के बजाय उसी पानी को हम आग बुझाने के काम ज़रूर ला सकते हैं। तो ज़रूरत होती है ज़िंदगी में अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलने की, क्योंकि जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही बहनों उसके जो परिणाम है वो भी अपने आप हमें बदले हुए नज़र आते
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, दृष्टिकोण के साथ साथ जो है हमें अपना जज्बा, जिस क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहती है या बहनें अपने पहचान बनाना चाहती है, तो आपको एक जज्बा होना चाहिए, साथ ही साथ उस दिशा में मेहनत करने के अगर आप में ताकत है, मेहनत आप पूरी तरह से करती है, तो यकीन मानिए मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।
0: बिल्कुल, और वर्तमान समय में महिलाओं की अगर बात करें तो वो आज हर क्षेत्र में सक्रिय हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार को भी मजबूती दे रही हैं, साथ ही स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
1: जी, और देखिए महिलाओं में प्रतिभा की तो कोई कमी होती नहीं है, उन्हें सही मार्गदर्शन, शिक्षा और अगर अवसर मिले तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकती है बल्कि समाज और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
0: बिल्कुल, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आज महिलाओं के पास ढेरों विकल्प मौजूद हैं। जिस विषय में या जिस क्षेत्र में बहनों आपकी रुचि है या फिर आप उसमें दक्ष हैं, आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकती हूँ, तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपना उसे करियर भी बना सकती हैं और उसे आजीविका भी कमा सकती हैं।
1: जी, और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अब समय बदल रहा है बहनों, और शिक्षा तकनीकी प्रगति के माध्यम से जो महिलाएं हैं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं और कई क्षेत्रों में अपना करियर भी अच्छे से बना रही हैं।
0: बिल्कुल, साथ ही अगर बात करें उमा ग्रामीण महिलाओं के करियर विकल्प की, तो कृषि है या कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं वो महिलाओं के लिए एक अच्छा करियर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि अब जैसे पहले खेती होती थी वो परंपरागत तरीके से की जाती थी, लेकिन परंपरागत तरीकों से हटकर अब महिलाएं जो है आधुनिक खेती कर रही हैं, या फिर जैविक खेती है, मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, या डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन वगैरह, ऐसी बहुत सारी करियर ऑप्शंस अपना कर जो है अपने जीवन को जो है सुखी भी बना सकती हैं, आगे भी बढ़ा सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं।
1: जी, और इसके अलावा जो है महिलाएं सिलाई कढ़ाई बुनाई हस्तशिल्प में भी अपना करियर जो है बना सकती हैं, और ये काम देखिए घर बैठे ही किए जा सकते हैं और बाजार में उत्पादों की अच्छी मांग भी रहती है।
0: बिल्कुल, और अगर महिलाओं के अच्छे करियर जो विकल्प हैं वो तलाशने के लिए हाँ बहुत सारी कई बार चुनौतियां आती हैं या फिर बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, जैसे कि अगर महिलाओं की हम खासकर बात कर रहे हैं तो उन पर बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं या फिर कोई सामाजिक बाधाएं होती हैं, शिक्षा की कमी है, संसाधनों की कमी है, या कई बार क्या होता है उमा की जागरूकता की हमारे अंदर ही कमी होती है, तो जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अपने शौक के अनुसार कई बार अपना करियर जो वो नहीं चुन पाती हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है, ऐसे में बहनों ये ज़रूरी बात यही है कि आपको जो है या महिला को जो है वो शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देना ज़रूरी है, साथ ही आपका जो कौशल विकास है या फिर जो डिजिटल

0: साक्षरता है, यानी जो डिजिटल प्रशिक्षण है, वो देकर भी आप खुद ऑनलाइन कामकाज के माध्यम से खुद को सक्षम भी बना सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं।
1: जी, आशा ज़रूरत है तो बस अपने आप को पहचानने की, अपने मन में टटोलने की कि आपको क्या काम करना है, किस दिशा में अपना करियर बनाना है, ये पहले आपको स्वयं ही तय करना है। उसके बाद बारी आती है दृढ़ संकल्प की
0: जी,
1: और मेहनत आप कितनी उस दिशा में कर सकते हैं वो भी आपको देखना है। साथ ही आपने बात की रुचि की कि किस तरह से रुचि की अगर आप काम करते हैं और उसको ही अपना करियर बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है और अपने जीवन को आप हंसी खुशी जो है बिता सकते हैं। साथ ही साथ जो करियर विकल्प है उसे भी आप अपने विवेक के अनुसार चुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते भी है ना उमा कि जो परिस्थितियां होती हैं वो अगर मुश्किल हो तो कहीं ना कहीं हमारा हौसला कभी कभी डगमगा जाता है। लेकिन बहनों, परिस्थितियां मुश्किल हों तो क्या, इरादे मजबूत होने चाहिए। राहों में जितने भी उतार चढ़ाव हों हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। जब जिंदगी के इम्तिहान आए तो हौसले और ऊंचे होने चाहिए। जीत चाहे देर से ही मिले मगर उम्मीद जो है वो सदा रोशन होनी चाहिए।
1: जी।

0: तो मैंने देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव जो है इतना बढ़ गया है कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ पल जिनमें जिन्हें हम जो है अपने लिए चुरा सकते हैं और उसमें सुकून की अनुभूति महसूस कर सकें, इसके लिए जो है बेहद ज़रूरी है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें और काम से थोड़ा सा ब्रेक यानी विराम लेना बेहद ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि लगातार काम करते रहने से थकान तो होती है और थकान कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक विराम, एक अल्प विराम या अंतराल की जरूरत है। तो इससे जो है हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है और जो हम काम करते हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में छोटे छोटे जो विराम होते हैं वो लेना एक अच्छी आदत बन सकती है उमा, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी आशा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहनों कि जो आप विराम लेना चाहते हैं अपनी दिनचर्या से वो बहुत ज़्यादा हो, बल्कि दिन भर के लिए छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं ना वो आपकी थकान को कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे हल्की फुल्की जो शारीरिक आपकी गतिविधियां होती हैं, जैसे टहलना है, व्यायाम करना है, ये सारी चीजें शरीर को ऊर्जा और स्फूर्ति से भी भर देती हैं और साथ ही तनाव को भी कम करती हैं।
0: जी
1: तो उमा, देखिए रिश्ते हो या सेहत हो, दोनों को नियमित संभाल की जो दरकार है, जरूरत है, वो होती है। तो बहनों, इसके लिए समय भी लगाना पड़ता है। इसीलिए जब भी फुर्सत मिले अपनों से जुड़े और अपना जो संवाद है दूसरों के साथ वो कायम रखें। अक्सर रिश्तों में दूरियां बढ़ने पर लोग जो है क्या सोचते हैं कि पहल दूसरे सामने वाला व्यक्ति करे हमसे बात करने के लिए, या वो हमारे लिए समय निकाले, वो हमारे लिए समय नहीं निकाल पाता है, ऐसी हमेशा हमें शिकायत रहती है। तो बहनों, हम तो यही कहेंगे कि आप फुर्सत के पलों में अपनों से जुड़ें और रिश्तों को जोड़ने की ठानें, तो रिश्तों
0: बिल्कुल
1: में मधुरता भी आएगी और जिंदगी को जीने का एक जो आनंद है वो भी आएगा।
0: जी, और रिश्तों की डोर को संभालने के लिए हमें थोड़ा सा जो समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपने रिश्तों के लिए सहेज कर रखना है, और यही हम बहनों के लिए भी यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा सा समय उनके लिए एक अच्छा सा गीत सुनाकर।
1: बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा समय शेष है तो कार्यक्रम का आखिरी गीत सुन लिया जाए।
0: जी

देखिए बहनों, हर रात के बाद सुबह आती है, यानी हर रात सुबह में ढलती है, मुश्किलें रास्ता रोकती हैं, मगर हौसलों से ही मंजिल मिलती है। और हिम्मत हारने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही हमारी जो किस्मत है वो चमकती है। तो इसी विचार के साथ अपनी सखियों को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

ये था कार्यक्रम महिला सम्मेलन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी

जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम शिमला पर लीजिए अब एंजॉय कीजिए म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का फर्स्ट सॉन्ग बंटी और बबली मूवी से एंजॉय कीजिए और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए क्योंकि मूवी का सॉन्ग उदित नारायण और राधा की आवाजों में।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक मस्ती। लीजिए अब सुनिए चॉकलेट मूवी का सॉन्ग सोनू निगम की आवाज में।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

लीजिए अब सुनिए म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग हंगामा मूवी से शान और साधना सरगम की आवाजों में। एंजॉय कीजिए और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इसी सॉन्ग के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में टाइम हुआ है दोपहर के 2 और एफएम शिमला पर अब वक्त है सबरंग कार्यक्रम का। तो करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज नुसरत फतेह अली खान की इस कवाली के साथ।

0: इसी सॉन्ग के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था।

0: नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।

0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक

0: विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ।

दोपहर के 2:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर अब आप लुत्फ उठाएंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। कार्यक्रम का पहला लोकगीत राजपाल की आवाज में।

लीजिए अब सुनिए रीनू भारद्वाज की आवाज में ये लोकगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम।

अभी आपने सुना जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला लोकगीत लीजिए सुनिए कश्मीरी राम और साथी की आवाज़ों में।

लीजिए अब सुनिए शिखरों के स्वर कार्यक्रम का अगला गीत सीताराम और पार्टी की आवाजों में। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ।

इसी लोकगीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्यधारा से वंचित ना रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। प्रदेश के कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। नगर निगमों सहित शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा

0: आ सके।
1: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एमएसएमई को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो डीएफओ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं एमएसएमईज के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 डीएफओ यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी, लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने समाज को नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को गहरी श्रद्धा व कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है और उनके विचार हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है संवहनीय ऊर्जा विकास के लिए लघु जलविद्युत का महत्व। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: जल के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली पनबिजली दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के बीच ये ग्रिड की स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। सौर और पवन जैसे रुक रुक कर मिलने वाले स्रोतों के विपरीत पन बिजली से लगातार 24 घंटे बिजली मिलती है। जैसे जैसे देश मिलीजुली स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव ला रहा है, जल विद्युत अपरिहार्य बन गई है। इस रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु पन बिजली विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से खासतौर पर उन पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा जहां इन परियोजनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2584.60 करोड़ रुपये है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 1500 मेगावाट की नई लघु जल विद्युत क्षमता को विकसित करना है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जहां लघु जल विद्युत की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वहां बिजली की पहुंच से जुड़ी चुनौतियां आड़े आती हैं। विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर उत्पादित बिजली को बढ़ावा देकर ये योजना दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भरोसेमंद बिजली पहुँचाने का प्रयास करती है और साथ ही पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता को भी कम करती है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा इस पहल में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। छोटी पनबिजली परियोजनाएं अपने न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, कम जमीन की जरूरत और लंबी परिचालन अवधि के साथ विकास का एक संवहनीय रास्ता दिखाती हैं। स्थानीय निवेश को बढ़ावा देकर, रोजगार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके ये योजना लघु पनबिजली को भारत के स्थायी और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की आधारशिला के रूप में स्थापित करेगी। ये योजना कार्यान्वयन में सहायता करने, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने और विभिन्न क्षेत्रों में लघु पन बिजली परियोजनाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लक्षित उपायों की एक रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य ध्यान वित्त पोषण, परियोजना की तैयारी और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में निष्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर है। इस योजना से लघु जल विद्युत क्षमता में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। ये योजना स्वदेशी संयंत्रों और मशीनी के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। भविष्य की परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायता के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना से निर्माण चरण के दौरान लगभग 51 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ये परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। लघु पनबिजली विकास योजना की स्वीकृति

भारत की अप्रयुक्त लघु पन बिजली क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्षित वित्तीय सहायता, अवसंरचना, विकास और संवहनीय संयोजन से ये योजना स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देने के लिए तैयार है। लघु जल विद्युत एक संतुलित समाधान प्रदान करता है जो संवहनीय विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को जोड़ता है, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय 24 घंटे बिजली प्रदान करके और ग्रिड को मजबूत करके। ये परियोजनाएं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लघु जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव के एक

0: आज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहां विकेंद्रीकृत उत्पादन न केवल संवहनीय बिजली प्रदान कर सकता है बल्कि ऊर्जा पहुंच को बढ़ाकर स्थानीय आजीविका में सहायता भी कर सकता है, जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हाल ही में मंजूर की गई लघु पन बिजली विकास योजना के माध्यम से भारत सरकार लक्षित प्रोत्साहन, सरल प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के जरिए इस विविध क्षमता का सदुपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामूहिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: ये फिल्म संगीत बेस्ड ऑन ओल्ड हिट्स, तो करते हैं शुरुआत और आपको सुनवाते हैं बंदिनी फिल्म का गाना एस डी बर्मन की आवाज में।
3: ओरे माझी

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से गाना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जब प्यार किसी से होता है फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में टाइम हुआ है दोपहर के 3:30 और एफएम शिमला पर अब आप इंजॉय करेंगे युववाणी कार्यक्रम। डीजे प्रस्तुत है।

कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दिन को और ख़ास बनाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त हर्षिता, और आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा खास कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, कभी गौर किया है कि हम सबसे ज़्यादा झूठ किसी और से नहीं बल्कि खुद से बोलते हैं। हम खुद को बताते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, या अभी सही वक्त नहीं है। दोस्तों, दरअसल सही वक्त कभी आता ही नहीं है, उसे लाना पड़ता है। आज हम अपने उन्हीं बंद खिड़कियों को खोलेंगे जिन्हें हमने डर के नाम पर बंद कर रखा है। खामोश सा शहर है, लेकिन शोर बहुत है, बाहर नहीं हमारे अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, एक बहुत गहरी बात किसी ने कही थी कि जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना। उसे समंदर की लहरों से टकराना ही पड़ता है अगर उसे अपना अस्तित्व साबित करना है। हमारा डर भी एक बंदरगाह की तरह है। वो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, हमें रिस्क लेने से रोकता है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी ग्रोथ आपके डर के पीछे छिपी हुई है? दोस्तों, अगर आप आज वो नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं, तो आप जीवित तो है पर खुलकर जी नहीं रहे।

दोस्तों, डर केवल एक इन्फॉर्मेशन है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है। डर का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। डर का मतलब है कि अब आपको और ज़्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। इस बार जब आप कोशिश करेंगे तो आप वो इंसान होंगे जिसे अपनी पिछली गलतियों का अनुभव है। खुद को इतना मजबूत बना लें, हर मुश्किल का हल निकाल लें। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना लें।

दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही लगा हो कि आज कुछ बड़ा करना है, लेकिन अगले ही पल एक छोटे से डर ने आपको चादर ओढ़कर फिर से सोने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अक्सर हम तूफानों से नहीं डरते, हम डरते हैं उस पहली लहर से जो हमारे पैरों को भिगो देती है। दोस्तों, याद रखिए, जब तक हम खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखो, आप कर सकते हैं, बस एक और कोशिश।

दोस्तों, जिस काम को करने से डर लगे उसे सबसे पहले करें। आपकी दौड़ आपकी खुद की पटरी पर है, दूसरों की नहीं। अपनी स्किल्स को निखारें, डर अपने आप कम हो जाएगा। जब भी घर से निकले तो ये मत सोचिए अगर मैं हार गया तो क्या होगा, बल्कि ये सोचिए कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। डर को अपना रास्ता मत बनाने दो, उसे अपनी सीढ़ी बनाएं। आप खास हैं और आप कर सकते हैं, और जो कोई और नहीं कर सकता।

दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते बस इतना कहूँगी, परिंदा जब उड़ान भरता है तो उसे भी नहीं पता होता कि वो कहाँ तक जाएगा, पर वो पंख फड़फड़ाना नहीं छोड़ता। मत बैठे मुसाफिर, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। मत बैठे मुसाफिर, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी तो नापी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे हर्षिता को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहे 103.7 MHz के साथ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में टाइम हुआ है शाम के 4 और एफएम शिमला पर अब आप इंजॉय करेंगे फिल्म संगीत। तो करते हैं फिल्म संगीत की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं बोल राधा बोल फिल्म से सॉन्ग कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में। इंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म संगीत का नेक्स्ट सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं मन मूवी से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

होगी प्यार की जीत, इसी मूवी के सॉन्ग के साथ अब फिल्म संगीत में इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ। तो दीजिए अब इजाजत अपनी रेडियो हम सफर दीपा बिक्टा को जाने की। आप कहीं भी मत जाइएगा, आप बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी फिलहाल प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 4:20 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं चंबियाली कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी रा शिमला केंद्र हा। इस मौके संजरे ठीक 4 बजे करे 21 मिनट भुएन ता पेशा जी तुंदा अपना चंब्याली कार्यक्रम।

जी त हाज़िरनु अकबारी फेरी तुंदे अपना चंब्याले कार्यक्रम लेकर ते स्वागत करते हैं तुसु सभी जने रा इस कार्यक्रम मंच। बिल्कुल जी, जियां तुसु पता ही है जे असे चंब्याले कार्यक्रम हरेक सवार है ब्रेप ते ते शंचरे लेकर इंदे ते कोशिश करते हैं जे अपनी भाषा अपनी बोली मां जे असे तुसु सीते जे असे जुड़ी सकन ते सीते सीते जे असे तुसु सीते कसी ना कसी विषय पर जे असे गल करते हैं, चाहे से इंदी भारत सरकार री स्कीम भून चाहे असे कोई ना कोई जे असे तुसु जागरूक करने रे ताएं विषय भर खूरा ते सीते सीते असे इंदे जेड़े चंबे रे लोग की थिंतियां जो असे सुनांदे आ ताकि तुंदा जे असे मनोरंजन भेजे असे बणूरा रहा। तो अज असु तुसी ते गल करने हाँ सभी तो पहले खेल कूद रा के महत्व हा इटेरे बारे में, ते थोड़े अग तुसु जानकारी देने हाँ तुसु जे अज जे असे एशिया रे जेड़े पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र नाथ टैगोर जी हैं त्यारी जयंती हा, ते यारी जे असे अज 162वीं जे असे जयंती हा राष्ट्रगान रचयिता रविंद्र नाथ टैगोर रे इस जयंती पर जे अजे सभी देशवासियां जो जे असे बड़ी बड़ी बधाई भून, ते असे उम्मीद करते हाँ जे इंदी भी श्रद्धांजलि जे असे इयां तकर जे असे पुजले, ते जेड़े भी यारे घर वाले हैं यारे टबरा वाले हैं तियां जो जिनसे इस रोजा जी बड़ी बड़ी जे हिनसे बधाई भून। तो असू इस कार्यक्रम री शुरुआत करने हाँ खेल कूद रे महत्व रे बारे में गल करे करे, तो सभी लोका जो जे असे पता ही है जे इंदी जिंदगी में खेल कूद रा कितना ज़्यादा जे असे महत्व हा, हर मनु रहताएं चाहे से निका बच्चा हा चाहे से मोटा मनु हा खेल कूद जे असे बड़ा भरी जरूरी हा, क जो कि ये सिर्फ असू शारीरिक रूप में जे असे स्वस्थ ना करदा बल्कि असू मानसिक रूप कने भी असू जे असे स्वस्थ बनांदा हा। तो इत पर जे असे गलबात असू जारी करने हैं कार्यक्रम की शुरुआत कर दें किशोर कुमार जी रे गाए इस लोक गीत कने।

जी अबे तुए शुणुआ ए बढ़िया जिना लोकगीत ता असे गल्ला करदे खेल कूद रे महत्व रे बारे में। ता हेरा जी पढ़ाई जिया से सिर्फ किताबा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इतमा जिया से शारीरिक ते मानसिक विकास जिया ए भी शामिल हा। खेल कूद जिया से शिक्षा रा अक जरूरी जिया से अंग हा जड़ा बच्चा रे जिया से पूर्ण विकास में सहायता करदा हा। खेला रे माध्यम कने ना सिर्फ बच्चे स्वस्थ रहते हैं बल्कि तियां मा जिया से अनुशासन ते टीम भावना ते होर भी मते सारे गुण जे हिन से चली इंदे हिन। खेडें थों जिया से इंदा शरीर स्वस्थ रहता हा जे थों असे कसी भी किस्मा री बीमारी थों जिया से दूर रहते हैं। खेडने कने चिंता तो दूर भुंदी ही हा पर शिक्षा में जैसे खेल कूद ता होर भी ज़्यादा जैसे जरूरी हा कजो कि ये बच्चियाँ जो कौशल जैसे दिन दे हा कौशल रहताएं जैसे निखार दे हा शिकरान दे हा टीम में किया करे काम करना हा ते किया करे जैसे असु दुए कने जैसे खेडना हा ते लड़ाई झगड़े था किया करे असु बचना हा दूर रहना ये सब कुछ जैसे असु खेडने था ही जैसे ईंदा हा। ये सब असु जैसे स्कूला में खेल कूद रहे रूप में जैसे शिकराए भी सकते हैं जड़े इंदे मास्टर हैं से ते जे असे पशु ते मणु री गल करते हैं ता किस्मा किस्मा रे खेला में जैसे ये हिस्सा लेंदे हैं जिया पोलो हा घुड़सवारे हा ते होर भी मती सारी खेलने री प्रतियोगिता।

जी अबे तू ये सुनवा ए बढ़िया जिना लोकगीत सुकरात इंदे चंबेरा जिया से बड़ा ही मशहूर जिया ए लोकगीत हाते है। मते सारे लोग जिन से इस लोकगीत जो बड़ा पसंद भी करते हैं। इंदे चंबेरी पूरी कहानी जिया से इस लोकगीता माँ जिया से चली इंदे आ जिड़ी इंदे सूही माता हा जियाँ इंदे चंबे माँ पाणे आ थू किया करे आ थू कस वजह था आ थू ते तिस टाइम में लोका रा के हाल थू राजा जिया तसेरा के हाल थू सारी प्रजा रा के हाल थू पूरा जैसे अपना दुख इस गीता रे जरिए जैसे ये दस दिन दा हा ता असु जैसे इस लोक गीत जो बड़ी ही गहराई कने जैसे सुनना चाहिंदा हा ताकि असु पूरे चंबेरी कहानी जैसे पता चले सका। ता असे गल करदे है खेल कूद रे आजकल बच्चे जो जी ऐसे ऐसे हेर देन ता टीवी की मोबाइल बस ये दो चीज़ जिनसे पकड़ी करे बेशिगान दहिन जे घर में अकेला बच्चा हा ता बेचारा तिस ताए ता बड़े ही ऐसे बल्ले सक दिया जे अक मुसीबत री गल बुझगान दिया जैसे अकेला हा ते तिस मले मोबाइल ते टीवी रे अलावा होर कोई सहारा ही समझ लिया जे नहीं है। ता इतना गलती सिर्फ ते सिर्फ इन दे हा आसू अपने टाइम जो जी ऐसे चेता करना चाहिंदा हा जेखने असें बच्चे जैसे बुंदे थी है ते स्कूला था जी असें घर पुजते थी है असें खेडना चली गांदे थी है चाहे से कोई खेडने रा मैदान भुआ चाहे कसीरा घर भुआ चाहे बात भुआ असे बस हिरदे थी है जे बैग रखना ते फटाफट जी असें आसू खेडना जी असें चले गाना हाँ फिर तेतमा असें पकड़म पकड़ाए छुपन छुपाए गिट्टी खेडना खो खो कबड्डी मती किस्म रे खेल जहन से असें खेडते थी है। ता असे जी हिन से अजर टाइमर है बच्चे जी से गल कर दे हिन तो पहले तो बच्चे जी हिन से बाहर गाना ही पसंद ना कर दे इन्हें जो बाहर गाना ही पसंद नहीं है तो जेड़े बच्चे बाहर गान दे हिन तो तिया जो जी से झटपट जी से मम्मी पापा जी इनसे शादी लेन देन जे तू है झटपट जी से घर चले आइया चाहे तिया गुछूरे जिनसे 15-20 मिनट बोले गुछूरे 30 मिनट बोले गुछूरे।

जी तुसें सुनेआ बचन, आवाज थी हेमराज चंदेल री। तो जी दिखा हून असा भाई गलबात करनी भाई आज के नए जमाने मंज आसा जो भाई स्वरोजगार भाई अपनाना बड़ा जरूरी हो गया कने इड़ा भाई दिखा आज के वक्ता रोजगार भाई दिखा आसा जो इदी कठे बहुत संघर्ष करना वहाँ भाई दिखा कने भाई इड़ा रोजगार केवल सरकारी नौकरियां तक ही नहीं रह गया भाई बदलते दौरा मंज नौजवान वर्ग अपनी प्रतिभा मेहनत और नवे विचार रे बल पर स्वरोजगारी तरफ बदना लग रहे कने इड़ा भाई स्वरोजगार मानुआ जो आत्मनिर्भर बना कने समाज री तरक्की और मुल्क री आर्थिक प्रगति मंज भी योगदान हुआ कने भाई और इड़ा भाई स्वरोजगार रा अर्थ भाई अपना रोजगार चलाना कने जे भी कोई माणू अपनी योग्यता कौशल भाई जो काम सीख रहा संसाधन रा इस्तेमाल करी कने अपना भाई कोई भी काम धंधा से भाई शुरू कर सका कने भाई दूजे पर निर्भर रहने के बजाय अपना कोई भाई दिखा काम काज कर सकें इदी कठे भाई आसा जो कुछ ना कुछ काम सीखना भी जरूरी आ ते भाई दिखा भाई ऐसे कोई भी काम काज चलाई सकें। आज छोटे छोटे व्यवसाय भाई ऑनलाइन काम काज कने भाई दिखा और इड़ा भाई ये जो खेती आधारित उद्योग है कने भाई डेयरी और ब्यूटी पार्लर मोबाइल रिपेयरिंग सिलाई कढ़ाई कने भाई कंप्यूटर सेंटर कने डिजिटल सेवा कने इड़ा भाई और भाई फूड प्रोसेसिंग मधुमक्खी पालन मशरूम उत्पादन कने भाई दिखा असे इदी मंज भाई दिखा भाई काम सीख के ने इदी वेबसाइट जो असे चलाई सकें कने इड़ा भाई स्वरोजगार अपनाने दे माणू भाई अपने वक्ता दे अपने काम रा दिखा मालिक हुआ भाई से जे भी कोई भी काम करा कने भाई से इदी दे दिखा आत्मविश्वास बधी जा चाहे दिखा भाई से शुरू मंज थोड़ा थोड़ा ही चलो बाद दिखा भाई जे भाई असरा हाथ बैठ जा तो काम असें ज़्यादा भी बधाई सकें कने भाई और भाई दिखा अपने काम च भाई दिखा जड़ा असें कभी भी कर सकें कने और ज़्यादा भी कर सकें ज़्यादा टाइम भी लगाई सकें कने भाई इदी सौगी जे भी एक माणू अपना कोई भी जो काम काज शुरू करा से भाई दिखा अगर से तीदी काम काज जो ज़्यादा बधा तो से और जो भी जो रोज़गार आ से दे सकें भाई जेडे अस ग्राउं च भाई बेरोजगार माणू हैं तो दिखा सभी जो फायदा हो सकता कने जड़ा भाई ग्राम रे इलाक मंज स्वरोजगार भाई काफ़ी ज़्यादा भाई दिखा होना जरूरी आ कने ग्राम दे शहर की तरफ अपलायन भी दिखा कम होना जरूरी आ एड़ा भाई ते बेसिका जे बे भाई असें भाई कुछ ना कुछ काम सीख गए और बागवानी और भाई जो असरी कृषि इधर भी दिखा भाई असें काम सही ढंग कने कर गए कने छोटे व्यवसाय शुरू करने दिखा आसान जो हुई भाई से सुविधा भी दी जाए ऋण सुविधा कने दी खटे भाई असें भाई पता भी कर सकें और मध्यम दे भाई जड़े उद्योग है कने स्थापित करने कट्ठे भी सहायता राशि दी जाए कने जड़ा भाई देखा कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा नौजवान प्रशिक्षण कने रोजगार जो देखा अगे बधाई सकें कने दी खटे भाई देखा सो पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी आ भाई इड़ा दिखा अस सब जाने डिजिटल इंडिया अभियान के कारण ऑनलाइन वेबसाइट दिखा मौके भी दिखा काफ़ी ज़्यादा मिलना लग रहे कने भाई इस मंज तेजी लियाने की जरूरत थी सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम दे माणू अपने उत्पाद चीज़ा जो देशा विदेशा तक भाई पहुँचाई।

जी तुसें सुनेआ लोक गीत, आवाज थी अरुण प्रकाश री। ता जी दिक्खा तुसें लोक गीत भी सुन लिया। हुन भाई असा भाई गलबात करनी भाई गुरु रविंद्रनाथ भाई आज जयंती भाई कने महान कवि साहित्यकार दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर री आज जयंती मनाई जाने लगी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कवि भी थे और भारतीय संस्कृति और मानवता रे एड़े प्रतीक थे कि भाई ये रचना आज भी सीख लेने वाली। कने रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 जो कोलकाता मंज एक प्रतिष्ठित जो टबरा मंज हुआ था जी। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध भाई समाज सुधारक थे। कने बचपन दे ही रविंद्रनाथ रा दिखा मन साहित्य संगीत और कला की तरफ भाई ज़्यादा ध्यान सोच विचार था। कने अपनी छोटी उम्र दे ही भाई कविता लिखना भाई शुरू कर दी थी। कने भाई और रचना मंज प्रकृति प्रेम मानवता और देशभक्ति री भावना भाई दिसा दी। कने मानू टैगोर जो गुरुदेव और प्यार दे भाई बोला थे भाई। कने रविंद्रनाथ टैगोर री कविता कहानी उपन्यास नाटक और गीता मंज कई सारी दिखा विधा और काफ़ी ज़्यादा योगदान था। कने प्रसिद्ध कृति भाई आसे सब जाने गीतांजलि कठे साल 1913 मंज साहित्य रा नोबेल पुरस्कार मिलया। कने भाई दिखा रचना मंज

और काफ़ी ज़्यादा योगदान था। कने प्रसिद्ध कृति भाई आसे सब जाने गीतांजलि कठे साल 1913 में साहित्य रा नोबेल पुरस्कार मिलया। कने भाई देखा रचना मंज भाई देखा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मिली जो आध्यात्मिका इधरी गहरी झलक मिला थी। कने हजारों गीतारी रचना हुई आज इध जो भी देखा रविंद्र संगीत रे नाम दे जाने जा भाई। कहने जी भारतीय राष्ट्रगान जनगणमन कने और भाई बांग्लादेश रा राष्ट्रगान भी रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। कने महान साहित्य योगदान रा प्रमाण था। कने भाई रविंद्र नाथ टैगोर रा मानना था भाई कि शिक्षा केवल किताबा तक भी नहीं होनी जरूरी नहीं, एड़ी शिक्षा होनी जरूरी है भाई मज प्रकृति कला और नैतिक मूल्यों का भी देखा इध मज होना जरूरी है। इधी कठे विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कने शांति निकेतन मंज विद्यार्थियों जो खुली भाई प्रकृति के अनुसार शिक्षा दीती जाती। कने भाई विश्वास था कि भाई शिक्षा दे मानू रा पूरा विकास हुआ। कने समाज मंज मानवता प्रेम और भाईचारे का संदेश दिता गया। कने भाई जाति धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव रे से भाई घोर विरोधी थे। कने ये विचार आज भी समाज जो नई दिशा दें। कने रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भाई देखा देशभक्त थे और अपनी रचना के माध्यम दे मानवा मंज देश प्रेम री भावना जगा थी भाई। कने भाई हिंसा रे भाई से विरोधी थे और शांति कने मानवता मंज विश्वास रखा थे। कने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड री उपाधि वापस कर दी गई थी। ये राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान रा प्रतीक था। रविंद्र री कविता और गीत स्वतंत्रता सेनानिया कठे भई प्रेरणा और साहस बने भई। कने भारत री संस्कृति और आत्मसम्मान जो विश्व भरा मंज पहचान दिलाई। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पूरे मुल्का और खास करी कने पश्चिम बंगाल मंज बड़े उत्साह कने मनाई जाना लग रही। कने इस मौके पर भई विद्यालय महाविद्यालय और भई संस्कृति जो संस्था मंज देखा कविता पाठ संगीत कार्यक्रम और नाटक आयोजित होना लग रहे। कने रचना सुनी और पढ़ी कने नौजवान पीढ़ी जो भई रविंद्र रे विचार प्रेरणा दे सीख लेनी जरूरी। कने आज के नौजवान मंज भई एड़ा कने देखा संस्कृति रा सम्मान मानवता रे रस्ते चलना भी देखा जरूरी हो गया। आज भी समाज मंज तनाव और भेदभाव बढ़ी गया भाई। कने टैगोर रा संदेश आसा जो शांति और एकता री राह दसा। कने भई एड़ा रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि और भारतीय संस्कृति री धरोहर थे और रविंद्र रा जीवन भई साहित्यक और आने वाली पीढ़ी कने सदा ही देखा सीख लेंदी रहेंगी। और देखा आसा जो भई संकल्प लेना जरूरी आ कि शिक्षा संस्कृति प्रेम और मानवता रे संदेश जो अपनी जिंदगी मंज आसे भई अपनांगे। तई देखा तुसे तई थोड़ी जी गलबात सुनी जी, त सुनना जी आसान लोकगीत, त सुना जी ए लोकगीत।

जी तुसें सुनया लोक गीत आवाज थी राजकुमार तई देखा इदी गीता सौगी हुण मंडियाली कार्यक्रम रा वक्त पूरा होने लग रहा। आ गया देवा नमस्कार।

मंडियाली कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। 5:20 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं पंगवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला बेल दी 5:20 ता 49 सैकेंड भई गए रे। पेश है त्यों आपूं मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम छुड़ने वाले सूबे जाना करताप सिंह ठाकुर पंगवा तरफा बेल दी नमस्ते। जी सुनने वाली हो हाजिर अखबार फिर त्यों आपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम घिन के त्यों सभ्या सुनने वाली के आज के इस खास कार्यक्रम अंतर स्वागत करते। जन तुम सभ्या पता है कि हाँ कार्यक्रम हफ्ते अंतर चारों सुमारे बसते शंचरे बेलदिया 5:20 पुठा शुरू करते और 5:50 तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता। आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जसपते तस जो साते साते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी FM चैनल पर भी चलता 104.7 MHz से फ्रिक्वेंसी साते साते है कार्यक्रम तू DTH तो मोबाइल ऐप पर भी सुनते। सुनने वाले अस तुह जी डखबोख लाते जे भी देर विषय होते तस्पुट और साते साते अस तुह अबल अबल घीतियारी की आवाज़ अंतर जे भी हैं चम्मे कनारी पैंगे कनारी जे घीतियारे तने आवाज़ अंतर सुनाते और देशे प्रदेशे खास खास खबर इलाके जो जरूरी खबर हुई से भी सुनाते तुह। आज अस थोड़ी दिन डखबोख लानी आपसी भाईचारे पुट और साते साते लोकतंत्र अंतर महणों के भागीदारी और समाजी अखताई पुट भी अस थोड़ी गल लानी अस्ती शुरुआत करनी अस अख बेदे जिन शिव भजन क्या फिर लाते तुह जी अगर डखबोख तमिल के सुनते इस शिव भजन।

जी, सुनने वाली नियामत हुसैन आवाज अंतर अभ्य जन शिव भजन धूड़ू बाबे गुणगान तुआ सुना। तो कार्यक्रम में शुरुआत से अठा करे छड़ी आवे थोड़े अगर बढ़ते डख बोखलां ते तुहां जो लोकतंत्र अंतर जनतई भागीदारी तथा समाजी अखतई बारे। सुनने वाले तुहें अपना मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने लौरा और आज अस आख एने कनार जस्ते डख बोख लाने जे ना सिर्फ बोटियात तकर बल्कि हैं ग्रां हैं समाज हैं इलाके जो साते साते हैं जे इने वाली पीढ़ी तसे मुकद्दर जो गहराया जो जुलूर है। लोकतंत्र या फिर बोल सकते प्यजी तंत्र व्यवस्थाई अंतर आम मैणु भागीदारी समाजी अखता तथा साफ सुथरी सोच बारे आई। सुनने वाले गल बिल्कुल सच्चाई की भाई हर मैण जस्ता से राजनीति बरीकी पैल्टिंग के जो उठा पटक या फिर जस्ता से ग्रां अंतर राजनीति बाड़ी जे चला की तस्गे राया जो न समझ सकता। ज़्यादातर मैण स्वभावक न जैसे दशा दे बूते तरक्की पसंद वाली सोच बूती तने और जे हैं बुते आजकल जे टाइम आस्ता जैसा बोल सकते कि भाई हैं जे बोटे आती जिखें टाइम बहुता तिखें बड़ी खींचतान भी चलती है ना एने उणिया दी तलने वाले मुकाबले भी भूते ऐसी सोच सस्ती आम मैनू जे पैल्टी के वाली राजनीति या उणिया तलने वाले जे अथन तो ज़्यादा दिलचस्पी ने विभूति मैणु के। हाँ ऐसे बावजूद भी समाज अंतर ग्रां अंतर तथा इलाके अंतर जस्त से तरक्की चिंतिया करीब करीब सुभ्य जना भूती और स्वभाव जनी गल भी अस्ती ऐ ता लोकतंत्र या फिर बोल सकते कि प्यजय तंत्र जस्त सुभ्य क्या बड़ी खूबसूरत खरी गल आई। एड़ी न सिर्फ जय बोते नैतिकें बल्कि आम मैणु जस्ती से तत्री ताकत आई। अब्राहम लिंकन जे अमरीके पहलकन जस्ते से राष्ट्रपति भी रहे बड़ी सीधी और साफ सुथरी गल की तना कि भाई जनतई जनतई वास्ते और जनतई तरफा जे अख व्यवस्था बनी थी तस्नो अस प्यजी तंत्र या लोकतंत्र बोल सकते। ऐसे से मतलब यह है कि प्यजी तंत्र या लोकतंत्र अंतर जे असली ताकत अस्ती से जनता के भूति। जी सुनने वाले हैं ग्रहें गल करेल हैं जे अपने प्यजी जे असली जे बुनियाद अस्ती से न सिर्फ पंचायती जख मठले जस्ते से शासन चलाने वाली

संस्था तक सीमित अस्ति बल्कि समाजे या फिर बोल सकते आम महनु हिस्सेदारी जे और सभ्याणी के तरक्की अख मजबूत जस्ती से बुनियाद बाड़ी शिलाई ग्रां स्तर पर जे चुनियर मीमर पंच सरपंच पंचायत समिति जे मेम्बर है या फिर जिला परिषद वाले जे नुमाइंदे सिर्फ कुर्सियाँ पर बिछना दी न भूनते बल्कि जनताई उम्मीदियाँ पूरे ने वास्ते जे हस्ते से अख सेवक तौर पर जस्ते से शुरुआती काम करते। अड़ी एक सवाल पैदा भूनता कि वोटियात सिर्फ हार जीत बाड़ी जस्ते से तत्कर सीमित होनी चाहिए या फिर तठा अगर निस्के जस्ते समाजे जस्ते से मकसद आए या जैसे बोते अगुवाई करने वाले आए तरक्की वाले जे फैसले तसे बढ़ावा देने तकर जस्ते से तसे अगर जैसे से बन चे सुनने वाले इस दौरान जस्ते से मतभेद भी बोझ सकते बुझी गल अस्ती कि वैसे भयानी के अपने अपने अलग अलग बखरी बखरी सोच बोझ सकती बखरे बखरे विचार बोझ सकते अलग विचार भोना भी अपनी अख बत्याखरी समाज अख बखरी ताकत हस्ती पर तड़ी ए गल भी ऐसा बड़ी जरूरी है कि भाई मतभेद जस्ते से कोई भी आपसी मनभेद अंतर न लुड़ी बदलिए किसकी बोटियात तो बते थोड़े दिन तक रहने समाज अंतर जे रिश्ते हस्ते समाज अंतर जे हैं आपसी भाईचारा हस्ता से जिंदगी भर तक चलता। आज इस गल इस वास्ते भी लाने लगो रहे कि लोकतंत्र वाला जे है काम चलो रहा प्रजातंत्र वाला जे काम चलो रहा ऐसे वास्ते भी हैं जिम्मेवारी भी अस्ती से भी ऐसा समझने रही हर प्योर मैन जस्ते से बोटियाती हक तो समझता और काबिल मैन जस्ते से बोटियात खड़ीने हक भी समझता पर हर मैन कोड़ी ना कोड़ी जस्ते से एज ए बते अपने बोख थैने जस्ते से आज़ादी भी अस्ती पर साथे तेरे साथे साथे जे जिम्मेवारी भी बढ़ती ऐसा फैसले कते टाइम न सिर्फ बते अपनी मठड़ी सोच अपना मठड़ा फायदा थोड़ा फायदा सोच के ऐसा जस्ते से अगर न बन चाहिए बल्कि ऐसा समाजे फायदे वास्ते सोचना चाहिए सिभियाणी के वास्ते सोचना चाहिए और एनी अगर सोच थे कि ऐसा अपना फैसला करना चाहिए कि जे पूरे इलाके जस्ते से तरक्की वास्ते कम करे अस तुम जे अगर डकबोक जारी था तो अकबे दिन होर लोकगीत तैयार थे रू पहले सुनते श्लोक गीत।

जी सुनने वाले किशोर कुमार आवाज़ अंतर है बेदे जिन लोग की तुह सुनो पूरा आनंद तुह ये बोल कार्यक्रम है अगर बल ते जी असा डख बोक तुह जो लान लो थी अखताब ते कसी भी समाजे सुभ्यक्यां जे बड़ी ताकत पूती जड़ी आपसी भाईचारा मजबूत पूता तड़ी साथे साथे तरक्की हो रहे जैसे रस्ते भी खुलते असी नु बोल सकते कि भाई आज कने जो समाज आए ते संतर नौजवान के और जिलहानियों के जैसे खासी भागीदारी है और है अख खरे जो बते निशानी भी अस्ती समाज अगर बढ़ने नौजवान सिर्फ बते मीडिया सोशल मीडिया तक न रही के जस्त से ग्रां समाजे पढ़ाई सेहती और अहम माहियों के भलाई वास्ते भी जस्त से जीती जरूरी अस्तु असन जे सोच बनानी जरूरी अस्ती कि जैस अंतर आपसी जे भाईचारा डखबोख जस्त से बढ़ावा है तालमेल बढ़े आपस बच्चे जिलहानियों तथा नौजवान के भागीदारी बढ़े और जनताई जस्त से पियाजी जस्त से भागीदारी सुबह के ज़्यादा जरूरी है। सुनने वालों से नहीं बोल सकते कि भेजे सेहतबंद पियाजी तंत्र है सेहतबंद जो लोकतंत्र भूता जड़ी जस्त से मैं न सिर्फ बुते अपने वास्ते सोचता न सिर्फ अपने वास्ते से जागता बल्कि अपनी जे जिम्मेवारी अस्ती तहनी वास्ते भी जीतीता सड़कें जरूरी है बिल्डिंगें जरूरी है ग्रां अंतर होरे भी काम जरूरी है लेकिन तस्कें भी ज़्यादा जे जरूरी है से हस्ता जे आपस बच जे विश्वास हस्ता आपस बच जे रड़ी में रहने जे अस्ती से अखताई वाली जे ताकत अस्ती से ज़्यादा जरूरी है। आखिरी अंतर से ये बोल सकते नहीं छोटे तो वहाँ कि भाई अगर अस अखताई जो रह ले अखताई जो अगर बढ़े ले और आपसी जे डखबोक करके अगर बढ़े ले है ना और महनियों के उसे बिहानी के फ़ायदा सोच के अगर अंश बढ़ ले तो हैं ग्रां हैं इलाका हैं समाज अस्तर से भले भले अगर बढ़ता और जे बोटियाती मकसद अस्तर से भी प्यूरियाला प्याजी तंत्र सिर्फ बोटियाली भी लेना मजबूत होता बल्कि जे सभ्यां महना जस्ते साथ नहीं कि अगर बढ़ने वाली सोच जस्तर से अगर बढ़ता तो कुछ है जानकारी तो जो बंटलियाँ सा जरूरी थी कुछ देशे प्रदेशे खास खास खबर भी अस तो सुनाते सभ्यां के पहल किन खबर आज के अंश के जाए से आ जाए कि भाई गुरुदेव रविंद्रनाथ जे ठाकुर है तेने 165वां जे जयंती जामणी दिन अस्ता इस मौके पर जस्ते दुनिया भरी के अंतर जस्ते सांस्कृतिक

से भूण लगोरे हैं देशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलू कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई साधारण जे मैन न होते बल्कि से तस्कें बढ़ के अख अगर से अख लिखने लिखनार भी थे, विचारक भी थे, कवि भी थे और तहना जस्ता से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अख असाधारण दार्शनिक शिक्षाविद कलाकार तथा भारतीय जे बोते सभ्यता बाड़ी जे आत्मा अस्ती तस शाश्वत रूप अंतर जस्त से अगर तकर छाप छड़ने वाले काम तना केरा। प्रधानमंत्री बोलू कि रविंद्रनाथ ठाकुरे जे समाज अंतर जे विचार देते तना जे चेतना देती तना जे ऊर्जा वाले जे गले तना की तथा साथे साथे अपू जे संस्कृत पर तना जे अस्त से विश्वास जतावा से बड़ी समृद्ध गले अस्ती बड़ी मजबूत गले अस्ती। तना बोलू कि गुरुदेव जे अस्त से गहरी श्रद्धा तथा कृतज्ञ जो तना याद की और तने विचार जस्ते से मैणु के जब ते अग्री रास्ता तना हुरा ले एनी तना कामना की। दो की आ सके जे खबर अस्ती कि हिमाचल अंतर 4754 जे पंचायती के नामांकन पत्र भरने वाला जे काम आए से दो के दिन कुल 5671 जस्ते से नामांकन पर्चे भरेंगे रे। इस हाब जो से शुरुआती दुई दिन अंतर जैसे नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार के संख्या 42562 हो गिरी। ऐसे अलावा जिस तरह 11 मई रोज नामांकन पत्र भरीन वास्ते एना जे चुनाव के वास्ते बुटियाती वास्ते 12 मई रोज जस्ते से नामांकन पत्र के जांच भूनी अस्ती जांच पड़ताल भूनी अस्ती और अगर 14 तथा 15 मई रोज जस्ते से उम्मीदवार के 3 बज तक जस्ता से तने के इतनी सहूलियत है कि से आपू नौ वापस नहीं सकते और अपने जे हिसाब जे पूरे हिमाचल अंतर 31842 जे पद दस्ते से 3 चरण अंतर 26, 28, 33 रोज जस्ते से वोटियात पूरी नस्ते। ऐ कुछ खास खबर तुआ दी थी और इसके पहले कि अस अगर तुमने छोटी लोक हित सुनाई जरूर अस बताना चाहते कि हैं जे इलाका जस्ता से बड़ा मजबूत इलाका था। मजबूत इसलिए बोल सकते कि अस मतलब कि कठिन टाइम अंतर अक साथ रहो रे रड़ी मिड़ी के रहो रे और असा हैं पुरखा सा एने रीति रिवाज एने दिने त्यौहार भी जस्ते से मते टाइम के जिखे पुथा भी जे हैं बते तड़ी बसो रस्ते तिखे पुठा से चलाओ रस्ते। मकसद इन्हें ये बुतत कि अस आपस बच रड़ी मिड़ी के रहे चाहे दिने त्यौहार अस्ते चाहे धौ दहमी अस्ती कम काज अस्ते है ना हर टाइम अस्त जिखे अस उठना बिछना लगो रे तो उन्हीं खाली गल भई गई थी लेकिन आपस बच जस्ते से आपसी भाईचारा से बनाए थे थे और अपना जस्ते से इलाके तरक्की बारे जस्ते सोच के जस्ते अगर बढ़ते अजे बोटियाती वाला जे मेड़ बूत अस दौरान भी अस ये सोच थैनी चाहिए कि ठीक है अस ब्याह के अपना अपना हक हस्ता अस अपने समझू जी अपना हक इस्तेमाल करने जस्ते से पूरी छूट हस्ती पूरी आज़ादी हस्ती लेकिन तड़ी अगर अस अपने ग्रहें जस्ते से अखता बनाई थी आपसी भाईचारा तस बनाई थी आपसी विश्वास जस्ते से मजबूत बना रहला तो अब बोटियात हैं सफल हो सकती और अस जस्ते से मिल के अगर बढ़ सकते। मौके साहब जस तुम जो डक बोखला खुरबे दे जिन लोग गीत अस तैयार थे सुनते श्लोकित

जी सुनने वाले हो मदन बिरयाले आवाज अंदर सभ्य जन लोक गीत जो तुहां कार्यक्रम में पूरा आनंद दिए बोल घड़ी भी इशारा कर लगोरी मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवा पंगवाली कार्यक्रम पूरे नहीं दे इजाजत तुहां से भियाँ झमेली नमस्ते।

ये था पंगवाले कार्यक्रम। शाम के 5:50 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। और आइए अब सुनते हैं लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लहरू राम सांख्यान की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

लोकगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से। आइए अब सुनते हैं उर्मिल ठाकुर की आवाज में गाया ये लोकगीत।

0: उर्मिल ठाकुर की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों में अभी बस इतना ही। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है, 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आप आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्रों के साथ ही FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िए, जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो

0: मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी इस मौके पर मौजूदगी दर्ज की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सौदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश के शहरी निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनाव में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
0: दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए सोमवार 11 मई से शुरू होने जा रही है। दिल्ली शिमला हवाई सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में महासू आर्ट की वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवास पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
2: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।
0: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में 1 प्रत्याशी की खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों को उन तक पहुँचाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ ही एफएम शिमला पर भी एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आकाशवाणी शिमला से आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

मीडियम यूगन एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। संजय 6:06 हो चुके हैं। यह समय है कांगड़ी कार्यक्रम का।

श्रोतियों नमस्कार, राम राम। हाजिर है अश्विनी कांगड़ी कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत करनी इस छोटी जी गल्ला ने। दिखा जी एक अहंकारी जिम्मेदार था जिहड़ा अपने महल का आहता बधाने ताई एक गरीब विधवा दी जमीना पर कब्जा करने की सोचता। बुढ़ी अपनी यादा दे जिहड़ियां उस जमीना ने जुड़िया थी, उस झोंपड़िया ने जुड़िया थी, उस कारण से झोंपड़िया नहीं छड़ना चाहती थी, पर जिम्मेदार उसको जबरदस्ती उतों ते कढ़ी देना चाहता था। बुजुर्ग औरत जिम्मेदार वाली जाई करी अर्ज करना लगी कि सह अपनी पोत्रीए ताई चूल्हा बनाए वास्ते झोंपड़ी ते एक टोकरी चिक जे है ले जाना चाहती। जिम्मेदार उसको इजाजत दे दिंदा। जल बुढ़िया से टोकरी चुगना लगी तो उसा ते चुकी नहीं गई। जिम्मेदार से मदद ताई उसको बोलिया कि मिंजो ते टोकरी जी है चुकी नहीं जाया करती है, तुसा मेरी मदद करा। तो बुढ़ी औरत उस जिम्मेदार जो बोलना लगी कि टोकरी का भार नहीं चुकी पा तो इस झोंपड़ी आई हजार चिक्कां आई टोकरी का भार जानवर कियां चुकी पांगे। ये सुनी करी जिम्मेदारे का अहंकार टूटी गया। फिर तीन इस झोंपड़ी का सहजे है उस बुजुर्ग औरत जो उस बुढ़िया औरत जो टाई दी। गलाने का मतलब है कि माणु जो अपनी शक्ति अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। से दूजे के दुख कने हजार टोकरियां आए पाप का बोझ जो भूली जाना चाहिए। ये मुख झोला माणु जो बड़ी मुश्किल न मिलता है। उस चाहिए कि जितना भला हो सके करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, खरी सोच रखना चाहिए, कने दूजे की जिस है मदद करना चाहिए।

ए आवासी हेमराज जी। दिखा जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जी 1861 च कोलकाता जिला जोड़ा बंक ठाकुरबाड़ी च होया था। इन्हों के पिता रविंद्रनाथ ठाकुर कने माता शारदा देवी थी। कने इन्हों की शुरू की पढ़ाई मनु स्कूल जेवीएच हुई थी। कने उन्हों की बैरिस्टर बनने की इच्छा थी। इच्छा जो पूरा करने ताई सन 1878 च से इंग्लैंड ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल च नाँ लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय च कानून का अध्ययन करना गए, पर 1880 च बिना डिग्री ले करी अपने देश से हटी आए। सन 1883 च इन्हों का ब्याह होया। कने बचपन से ही इन्हों जो कविता छंद भाषा च अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों चो मिलना लग्या। उन्हें पहली बारी कविता 8 साल की उम्र च लिखी थी। कने सन 1870 च 16 साल की उम्र च उन्हों की पहली लघु कथा छपी थी। दिखा जी, उन्हें अपने जीवन काल च कई उपन्यास निबंध लघु कथा यात्रा का वर्णन कने नाटक हजारा गाने लिखे। से ज्यादातर जो है अपनी पद्य कविता ताई जाने जाते थे। गद्य च लिखिया उन्हों दिया छोटिया कहानियां बड़िया लोकप्रिय जो है हुई मशहूर हुई। उन्हें इतिहास भाषा ज्ञान कने अध्यात्मिकता से जुड़िया कविता भी लिखिया। उन्हें तकरीबन 2230 गीत लिखे। रविंद्र संगीत बंगला संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने संगीत चो उन्होंने साहित्य ते अलग अलग निकिता से जा सकता है। गुरुदेव जी ने अंतिम दिनों चित्र बनाना शुरू किए। कने इस युग का संशय मोह कलांति कने निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। माणु ने भगवान के बीच जिहड़ा चिरस्थाई संपर्क है उन्हां दियां रचना च सै अलग अलग रूपां च उभरी करी सामने आउंदा है। उन्हां बंगाली सहित नोए तरीके ने पद्य कने गद्य सोगी सोगी बोलचाल भाषा का प्रयोग भी कीता। दिखा जी, उन्हां दियां रचना बांग्ला साहित्य च एक नई ऊर्जा ले करी आई। कने उन्हां एक दर्जन ते मते उपन्यास लिखे, जिन्हां च चौखीर वाली घरे सहीरे गोरा आदि शामिल हैं। सन 1913 च गीतांजलि ताई उन्हां जो

साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलिया, जिहड़ा एशिया च पहला विजेता साहित्य च है। सन 1915 च इन्हां जो राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी ने सम्मानित किया, पर सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध इन्हां उपाधि जो है वापस करी दिती थी। देखा जी 7 अगस्त 1941 जो ये इस संसार से सदा ताई अलविदा बोली है। हालांकि इस समय असां दे विच नहीं है, पर फिर भी इन्हां दी रचना जे पढ़ने ते इन्हां दी कमी से दूर हुंदी है। दिव्य लोक ते रचे ते इन्हां दे गीत काव्य रचने दी क्षमता जो इस ताई सामने आंदे हन कि हर कोई पढ़ने वाला जे आत्म मुक्त होई उठदा है।

रेखा देवी दी आवाज़ सुने तुसें लोक गीत। श्रोतेओ, प्रदूषण एक किस्मा दा बड़ा ही बड़ा जे धीमा जहर है जिहड़ा हवा पानी धूड़ ते हुंदे होया न केवल असां दे शरीर च हुंदा, उस दे बाद से माणवी जो बीमार करी जांदा है। खराब आवो हवा जीव जंतुआं पंख पंखेरुआं डंगरियां रुखां बूटां कने होर हरी भरी जिहड़ी बागियां हुंदियां हन जे भी गलाई सकदे के यह खत्म करी दिंदी है। खराब आबो हवा के कारण मते सारे माणु जीव जंतु पंख पंखेरू डंगर कने दूजे प्राणी इस दुनिया से दूर हुआ करते हैं। उन्हों का वजूद जो है खत्म हो गया है हुआ करता है। ये गल इतों ही खत्म नहीं होंगी। प्रदूषण खराब आबो हवा कई भयंकर बीमारियां जड़ियाँ होनी उन्होंने भी जन्म दिंदी है। कुदरत मौजूद सारिया किस्मों के जीवधारी अपनी बढ़ोतरी विकास करें सही तरीके ने जीवन चक्र जो चलाते हैं। देखा जी, आवो हवा च बीमारियां जड़िया होर होंगे हैं ताई ठीक रही सकदियां हैं, नहीं आ ठीक रही सकते हैं, बीमारियां नहीं आई सकदियां जेकर आ हरे रखू जगह जगह रुख बूट लगाते हैं कने माहौल जो है साफ सुथरा रखते हैं। कने आओ हवा च सारिया किस्मों दिया चीज़ा गलने वाली या फिर नहीं गलने वाली एक पक्के अनुपात च पाई जांदियां हन। आओ हवा च दूजे नुकसान देने वाले घटक आई जाते जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। देखा जी, आओ हवा खराब हो जाती है कने अज इन्हां दी वजह से ही सारी दुनिया च कैंसर तपेदिक उच्च रक्त चाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, शुगर हुई हैजा होया दमा होया मलेरिया होया कने चमड़ी के रोग होए आखी दी बीमारियां हुई कई ऐसी बीमारियां ते गिरे हैं जिहड़ी खराब आवो हवा का ही एक कारण है। अजकल के समय आवो हवा पूरी खराब है। जिस खराब आवो हवा च असा जी करते हैं अज ऐसा कोई माणू नहीं है जिहड़ा कुसी न कुसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। जिहड़ी मैं तुम्हें बीमारियां दसियां इसका कोई ऐसी बीमारियां जिहड़ी आम हो चुकी हैं। यूरोप के यंग प्रधान देशों च वैज्ञानिकों ने बड़ी पहले ही इस दे खिलाफ चेतावनी देकरी जो है दसिया था पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिता जिसका नतीजा यह है कि अज सारी दुनिया सोचने पर मजबूर है। सन 1972 च अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिक्कत जो निपटाने ताई दुनिया के कई देशों ने मिली करी सोच विचार भी किया जिस विच भारत भी शामिल था। श्रोतियों, प्रदूषण

कांगड़ी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। शाम के 6:35 होने को है। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। तो आइए अब सुनते हैं महाश्वी कार्यक्रम।

महासवी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता के निशा शर्मा ना प्यार भरा नमस्कार। आशा है तुसे सब ठीक ठाक होने और अपना ध्यान रखने लगे रहे। देखो आजकल मौसम कदी गर्म कदी ठंडा हो जावा कदी बरखा हो या, तो एड़े जो है आशा के अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि आसे बीमार ना होइए। खासकर एड़े मौसमों दी आशा के जो है बाहरली चीज़ा से नहीं खानिया चाहिए ताकि जो है क्योंकि इन्हें जो बाहरली चीज़ा हो या पैकेट बंद चीज़ा इन्हें थे आसार शरीरों दे कई बीमारियाँ उई जाइया। देखो गलबात उन दिलानी आऊँ जो है तुसा के अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा दस दूँ। अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करनी आसा लोकगीतों साथे गलबात करनी नशे थे बचाव और देवी देवताओं की भूमि हिमाचलों के बारे दे। अपने सुनने वाले के खास खास खबर भी सुनानियाँ और साथ साथ तिनारा मनोरंजन भी करना। तो लो सुनो तुसे लोकगीत।

ठंडा पानी मेरे क्यारो रा गाने वाले थे योगेश शर्मा जी। तो देखो ए ब्यासा गल बात करनी नशे थे बचावो रे बारे दे। आजो रे आधुनिक युगो दे नशा एक एड़ी सामाजिक बुराई बनी गा दा जो आसारी युवा पीढ़ी के सियुंका साई पितरा थे खोखला करने लगी रा। शराब सिगरेट और नशीली दवाइयां रा बढ़ता हुआ चलन आसारे शारीरिक स्वास्थ्य

खराब नहीं करता बल्कि मानसिक और आर्थिक स्थिति की भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो नशे से बचना ही जीवन और असली सुरक्षा आए। नशा एक एड़ी बुराई है जो आसारे जीवनों के बर्बाद ही नहीं करता बल्कि बोलो भी ये भी जो नशा है ना से नाशोरी जड़ आए। नशे री आदत थे आदमी परिवार और समाज जो पांदे बोझ बन जावा। युवा पीढ़ी सभी थे ज्यादा नशे री लता थे पीड़ित आए। ऐसा आदत छुड़ाने री तई नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाए। शराब और गुटके पांदे रोक लगाने री भी कोशिश करी जाए। नशे रे रूपों दे लोग जो है शराब गांजा जर्दा ब्राउन शुगर कोकीन जेडे नशे रा प्रयोग कर रहे जो स्वास्थ्य साथे सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाजा थे ठीक नहीं आए। जिस आदमी के नशे की आदत पड़ी जाओ तेस खे समाज जो लोग जो है से घृणा थे देखो। आजकल तो से देखा होगा इतने नशे दसे पर जो चिट्टा है से सभी थे बुरी बीमारी आए। एते थे पूरा कर जो है बर्बाद हुई जावा और जो ते के जिस आदमी के इतनी जो है आदत पड़ी जाओ तो से बचदा पनी। इतने जो नशा करो आदमी से सामाजिक कामा दे भी अपना योगदान कोई नहीं दे सकता। जो बीड़ी सिगरेट पियो तेते ते फेफड़िया का कैंसर हुआ। और कुछ लोग जो है कोकीन चरस अफीम जड़े नशे करो जेते थे आदमी जो है से पागल हुई जावा। इसके अपना ही कोई पता नहीं उन दापी से क्या करने लगे रहा और से क्या लगे रहा बोलने। नशे थे आदमी और पैसे दोनों ही जो है से हानि हुई। हिंसा बलात्कार चोरी आत्महत्या आदि अनेक अपराध के पीछे नशा ही एक बहुत बड़ी जो है से वजह। शराब पी की गड्डी चलाते हुए एक्सीडेंट करना अपनी घरवाली के कूटना ये आम बात है क्योंकि शराब पीने से आदमी रे शरीर और बुद्धि साथे आत्मा रा भी नाश हुई जावा। अगर आसे मनो दे ठानी लईए और सही तरीके से कोशिश करिए तो आसे कैसी भी आदता थे जो ऐसे बची सकूं है। आदता रा मतलब आए जदू तक आशा की चीज ना मिलो तो आदमी तेते थे से बेचैन रहा। जेबे तेस के से चीज मिलनी तो से थोड़ा जा ठीक होना। असल ते तेसरे पितरे जो है जो तेसा अंदर हुआ से कमजोर हुई जावा और से असलियता दे जो है से बीमार हुई जावा। नशेरी लत होना एक बीमारी है। पहला तो बच्चे इतने के माहौल देखे कि यारा दोस्ता साथे शौको शौको दे करो तेते थे बाद जो है तीना की इतनी आदत हुई जाई और एक टाइम एड़ा आवा पई तुसे इतने थे बिना रही पा नहीं सकते नहीं। नशे थे आशा के बच्ची की जो है से रहना चाहिए। आजकल बच्चे माँ बाप सुन दे नहीं और गलत आदतें पड़ी जाओ। आशा के चाहिए भी बच्चा पांदे ध्यान दिए पे से क्या करने लगी रहे कितनी देर बाहर रोए और क्या करोए। नशे थे बचाई की राखने रही तई आशा के बच्चा के नशे थे होने वाली हानि रे बारे दे दसना पड़ना पई नशे थे फेफड़िया री बीमारी कैंसर मानसिक विकार हुई जावा दिलों रो दौड़ा पड़ सकवा देश के कोई भी लड़ने दे परेशानी हुई से हमेशा जो है से तनावों दे रवा। नशे के छुड़ाने रही तई अनेक दवाइयाँ भी बन गई ये दिया है। नशा छाड़ने रही तई सभी थे पहला आशा के आपू ही निश्चय करना पड़ना पई ये जो है से एक बुरी चीज आए आशा के ये नहीं करनी। अपना ध्यान अच्छे कामों दे लगाओ तुसे जेबे कामों दे व्यस्त रहने तो तुसारा ध्यान नशे किनारे नहीं जाना। गुस्सा कम करो अपने मनो दे आए विचार रखे दूजे आदमी के जरूर से जो है दसो पे तुसारे मनो दे क्या क्या विचार आने लगी रहे। सभी थे बड़ी बात स्कूल और कॉलेज दे बच्चा के नशे के बुरे परिणामों के बारे में दसिया जाना चाहिए। ज़्यादातर युवा अपने जो है दोस्तों के दबावों दे आए कि नशा शुरू करो तो हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार वाले दोस्तों साथ रहना चाहिए। जब भी तुसे किसी तनाव या परेशानी दो तो तेस के अपने माँ बाप या बड़िया के दसो। ज़्यादातर तो लोग किसी साथ गलबात नहीं कर सकते और आपू के राहत पाने रहते ही नशे रा जो से सहारा लोए। नशा एक अभिशाप है जो हाथ से खेल दे परिवार के उजाड़ी देवा। अगर आसे एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्रों के बनाना चाहोए तो आशा के नशेरी ऐसा जंजीरा के जो है से तोड़ना। नशेरी आदता छुड़ाने रहती है अपने मनो दे ठानी लो भाई आशा नशा छाड़ना। कुछ दिन तुसा के इतने परेशानी होनी पर तुसा के आपू के मजबूत बनाना तेबे ही ये आदत छूटनी। कोई भी नशा छाड़ने रहती अपनी आदत आवले आवले कम करो। आपू पांदे थोड़ा जा असर रखो डॉक्टर की सलाह लो

योग करो, व्यायाम करो, जेते थे तुसे जो है इत्ते के अवड़े अवड़े छाड़ी सको। जिया कि तुसा के पता है पे आ सारे देशों की जनसंख्या ज़्यादातर युवा वर्ग की आई, तो आसा देश ते भी प्रगति करी सकवा जेबे ते तेरा युवा वर्ग जो है नशे से मुक्त रहना। आसा के संकल्प लड़ना चाहिए पे आसे अगर नशा करूँ है तो तेते के छाड़ने की पूरी कोशिश करिए, और अपने बच्चा के नशे थे दूर रखने री तई आसा के टाइमो टाइमो पांदे तीना के समझाना चाहिए। आसा के ये संकल्प लेना चाहिए कि आसे आपू के भी नशे से दूर रहना और दूजा के भी इतरे प्रति जागरूक करना, क्योंकि नशा जो है से विनाशोरी रहाई और नशा मुक्ति ही जीवनोरी चाहे। तो ये तो थी थोड़ी सी गलबात नशे रे बचाव से बारे दे। तो ये जो है आसा अपने सुनने वाले के एक लोकगीत फिर सुनाना।

ना कर गोरिये मैली अखियां, गाने वाले थे टेक चंद और ओम प्रकाश जी। तो ये भी ऐसा गलबात करनी देवी देवताओं री भूमि हिमाचल रे बारे दे। हिमालय री गोदा दे बसया हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत रा एक एड़ा राज्य है जेती कणों कणों दे देवी देवत्या रा वास मान्या जावा। हिमाचल रा अर्थ है बर्फ और आंचल, ऊंचे बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां और कल कल बहती नदियां ए थोड़े वातावरणों के इतना पवित्र बनाई दियो या पे एड़ा लगा मानो भगवान ने आपू जो है एती धरतिया के अपने रण री तई चुनी रखो। हिमाचलों के देवभूमि बोलने पीछे कई जो है पौराणिक कारण आए। धार्मिक मान्यताओं ने अनुसार हिमाचल जो है भगवान शिव और माता पार्वती रे रण री जगाई। किन्नौर रा किन्नर कैलाश और चंबा रा मणिमहेश भगवान शिवोरी दिव्य हाजरी रे प्रमाण मान्या जावा। महादेव एथो रे कण कणों दे रचे बसे दे आए। एती सती रे अंगारे पड़ने थे पांच प्रमुख शक्तिपीठ बने। ब्रजेश्वरी एती सती रा दाहिना वक्ष पड़या था। ज्वालामुखी जेती माता री जीव पड़ी थी और आज भी बिना केसी ईंधनों थे माता री दिव्य ज्योत जो ऐसे दिन रात जगदी रोई। चिंतपूर्णी नैना देवी और चामुंडा देवी यो मंदिर करोड़ों लोगों री तई आस्था रा जो ऐसे एक केंद्र आए। हिमाचल री विशेषता एथोरी ग्रामीण देवता प्रणाली आए। एती हर गांव रा अपना एक अलग देवता हुआ जे देखे कुल देवता या ग्राम देवता जो ऐसे बोलिया जावा। शिमले और ऊपरी महासुदेवता री बहुत मान्यता आई। लोग किसी भी शुभ काम मौके करने ते पहला जो है अपने देवी देवता री आज्ञा लोए। एथोरे देवताओं रे अपने रथ अपने बजाने रे यंत्र और अपने अलग अलग नियम होए जो दुनिया देखे थी और देखने के नहीं मिलते दे। देखा होगा तो उसे पीछे भी देखो बोलो है ना सर भी जाता ही तो जो देवता है अपने मंत्र हाथ निकलो रथ था दे निकलो है, तो तीना साथी जो है तीनारे जो अपने अपने साज बाज होए बजाने के। तो सभी जगह दे अपने अपने अलग देवता और अलग अलग जो है इनारी मान्यता हुई। और जो आसे लोग हैं अपने अपने देवता री पूजा करूँ है अर्चना करूँ है और तिना के जो है मानूँ है। हिमाचल रे मेले और त्यौहार पूरी तरह थे देवताओं के समर्पित होए। कुल्लू रा प्रसिद्ध शहरा ए तेरा सभी थे बड़ा उदाहरण आए जेती सैकड़ों स्थानीय देवता भगवान रघुनाथ जी के नमन करने पहुँचोए। तेरा ही मंडी री शिवरात्रि और रामपुरा लवी मेला व्यापारों साथे साथे जो है से आध्यात्मिक मिलन रा प्रतीक आए। ए थोड़े लोक नृत्य जेड़ा कि नाटी अक्सर जो है देवत्यार स्तुति दे करे जाए जो कि देवत्यार प्रति समर्पण रा अद्भुत उदाहरण आए। जियाँ कि तुसे भी देखा होगा पी जे भी कोई ऐसे भगवानों रे भजन कीर्तन करूँगा तो आ सारे जो है अलग अलग जो है गाने बजाने होए भजन गाऊँ ऐसे तीना पांदे जो है नाचू है। हिमाचल केवल देवत्यारी नहीं बल्कि महान ऋषियारी भी कर्मभूमि आई।

मनाली ये नाव आपू जो है मनु ऋषि रे नाव पांते पड़िया जिना के सृष्टि के बनाने वाला मान्या जावा। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे रे नेड़े ये जगह महर्षि व्यास री तपस्या रा गवाह आई। यदि जो है महर्षि व्यासे जो है तपस्या करी थी पराशर झील मंडी जिले दे ये झील और मंदिर महर्षि पराशर के समर्पित है जे थोड़ी शांत सुंदरता किसी के भी अंतर्मुखी बनाई दी हुई। देव भूमि री संस्कृति रा सभी थे सुंदर प्रभाव ए थोड़े लोका पांदे दिसवा। ए थोड़े लोग बहुत सरल ईमानदार और मेहमाना रा जो है आदर सत्कार करने वाले हुए। एती जो है मेहमाना के भगवानों समान समझा जावा। ए थोड़े लोग अपने देवता रे न्याय और दंड पांदे अटूट विश्वास रखोए। आज रे आधुनिक दौरों दे जेबे पर्यटन यानी कि बारह थे आने वाले लोग बढ़ने लगी रे हिमाचल ही एते छवि के बचाए रखना एक चुनौती आई। पर्यटन साथ साथ एथोरी शांति और पवित्रता के बचाई की रखना हर हिमाचली और आने वाले लोग का कर्तव्य आए। एथोरी आवाओ दे मंत्रारी गूंज और पहाड़ा दे मौन तपस्या आई। तदू तक एथोरे मंत्रारी कंटिया बजदी रणिया जदू तक एथोरे आदमी अपने देवत्यारे आगे अपना माथा चुकांदा रहना। हिमाचल केवल घूमने की जगह ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा के शांति देने और भगवानों से जुड़ने का एक द्वार आए। ये तो थी थोड़ी जी गलबात देवी देवता और भूमि हिमाचल। तो ये भी जो है आपने सुनने वाले के कुछ खास खास खबर भी सुनानियाँ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी समाज और एक कमजोर वर्ग के सशक्त बनाने की तई मिली की कोशिश करने की जरूरत पाते जोर दित्या ताकि कोई भी विकास और मुख्य धारा से पिछड़ा न रहो। सो आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा रे दो दिनारे राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत दे बोलने लगे रहे थे। तिन्हें बोलिया भी साल 2047 तक विकसित भारत रे लक्ष्य के हासिल करने की तई सामाजिक समरसता और समावेशी विकास बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भरो दे एते सालों री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत रा आयोजन करने लगी रहा। एते रे सचिव संजीव पांडे रे अनुसार एते पहला रा उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित रेक्या थे लड़ाई के शांति साथ निपटाना और अदालता पांदे बोझों के कम करना है। तिन्हें बोलिया भी लोक अदालता ते समझौता करने आपराधिक मामले चेक बाउंस और बैंक वसूली जड़ी लड़ाइया साथे कई प्रकार मामलों की सुनवाई करी जाओ। तिन्हें बोलिया भी साल 2023 थे 2025 रे बीचे 12 राष्ट्रीय लोक अदालता रा आयोजन करी कि 26 करोड़ मामलों रा निपटारा कराया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव सी पाल रासु पंचायत चुनाव बारे चलते आज पालमपुर दे स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्र का निरीक्षण कराया। तिने पंचायत युवा चुनाव के अधिकारियों के जरूरी दिशा निर्देश दिते। स्ट्रांग रूम और मतगणना जगह थे जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पांदे भी जो है से तिने जोर दित्या। प्रदेशों री 3754 पंचायतों के नामांकन पत्र भरने रे दूजे दिन कुल जो है 25671 नामांकन पत्र भरे गए। चुनावों के शुरुआती दो दिनों के नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42562 होगी। एते थे अलावा 11 मई के भी नामांकन भरे जा सके। इन्हों चुनावों की तई 12 मई के नामांकन पत्र की जांच करी जानी जबकि 14 और 15 मई के उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सको। प्रदेशों की कुल 31182 पदों की तई 3 चरणों के 26, 28 और 30 मई के वोट पाए जाने। तो ये तो थी कुछ खास खास खबर। तो जानते जानते अपने सुनने वाले के एक लोकगीत फिर सुनाना।

सुनीता रघुवंशी ने गाय लोकगीतों साथ आ सारे कार्यक्रम और वक्त भी होगा मुलाकात उन्हें आने वाले सुहारे तो दो इजाजत सभी सुनने वाले के निशा शर्मारी राम राम।

0: बातें तो हम किसान भाइयों से करते रहेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बता देते हैं कार्यक्रम के आरंभ में कि आज कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं।
1: जी किसान साथियों, आज हमारा काम की बातों के अंतर्गत जो जानकारी का विषय रहेगा वह है आलू में जल एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन।
0: अच्छा जी,
1: साथ ही साथ हम अपने किसान और बागवान साथियों का मनोरंजन कराएंगे लोकगीतों के माध्यम से और रोजमर्रा की तरह सुनाएंगे उन्हें एक जानकारी पूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा पशुओं में संतुलित आहार। और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर पंकज भारद्वाज और उनसे जानकारी हासिल करेंगे देवेंद्र कुमार
0: जी। और किसान भाइयों, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हम आपको जानकारी देंगे कल

0: रोजमर्रा की तरह सुनाएंगे उन्हें एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा पशुओं में संतुलित आहार। और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर पंकज भारद्वाज और उनसे जानकारी हासिल करेंगे देवेंद्र कुमार
1: जी। और किसान भाइयों, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हम आपको जानकारी देंगे कल कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास उसके बारे में
0: जी।
1: जहां तक बात है राम जी आज के कार्यक्रम की, तो आज का जो कार्यक्रम है किसान भाइयों के लिए खास है क्योंकि बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय पर हम किसान भाइयों को जानकारी लेकर आए हैं
0: जी।
1: तो जैसा कि आपने कहा किसान भाइयों से कि काम की बातों के तहत हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि आलू में जल एवं पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में
0: जी।
1: तो आलू जो है हमारे किसान भाइयों की सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है और इसका जो उत्पादन है वो काफी क्षेत्रों में होता है। और किसान भाइयों, जहां तक बात आती है आलू की फसल में जल प्रबंधन के बारे में, तो आलू उत्पादन के लिए किसान भाइयों जल के महत्व की क्या विशेषता रहती है, तो राम जी क्यों ना किसान भाइयों को इसके बारे में बता दें
0: जी। किसान साथियों, पौधों का 80-90% भाग पानी ही होता है।
1: अच्छा जी।
0: और पानी ही के उपयोग से पौधे हरे भरे रहते हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और भूमि से खुराक के तत्व और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं जो कि समस्त प्राणी मात्र के जीवन का आधार बनता है।
1: अच्छा जी।
0: पानी की कमी के कारण पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं और बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पानी के सही उपयोग संरक्षण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ग्रहण की जाए।
1: बिल्कुल। और किसान भाइयों, अगर आपके पास सही और सटीक जानकारी है तो आपको खेतीबाड़ी और बागवानी के कामकाज को निपटाने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी
0: जी।
1: ठीक है जी। तो अब बात आती है राम जी की मिट्टी में है कितनी जो नमी है वो होनी चाहिए
0: जी।
1: किसान भाइयों, पौधे के विकास की किसी भी अवस्था में पानी की कमी फसल उत्पादन के लिए हानिकारक होती है। ज्यादा नमी भी पौधों के विकास के लिए हानिकारक होती है क्योंकि ऐसी अवस्था में मिट्टी में वायु कम प्रवेश कर पाती है और पौधों को सांस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है
0: जी।
1: राम जी, इतना ही नहीं है, किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी अवस्था में पौधों में बीमारियां भी बढ़ जाती है और जो कंद लग जाते हैं आलू में, जड़ें सड़ जाती है और जो कंद है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस बात का किसान भाइयों आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में पानी की मात्रा संतुलित होनी चाहिए जिससे कि पौधों का जो विकास है वो सही तरीके से हो पाए
0: जी। किसान साथियों, जल संरक्षण की कुछ विधियां भी होती है। किसान भाइयों, आलू की फसल के दौरान खेतों में मिट्टी चढ़ाकर भी खेत में हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं। लगभग 2-3 बार मिट्टी चढ़ाने से जमीन के अंदर की नमी बनी रहती है और इस प्रकार सूखे के समय भी पौधों की जल की आवश्यकता को पूरा करने में यह सहायता करती है।
1: अच्छा।
0: इसलिए आलू की बिजाई के साथ ही साथ मेड़े बनाने का काम भी पूरा हमारे किसान भाइयों को कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल जी। आलू की फसल को सूखे से बचाने के लिए पलवार का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं तो काफी इसमें फायदा हमारे किसान भाइयों को होता है
0: जी।
1: चीड़, देवदार या अन्य वृक्षों की सूखी पत्तियां इकट्ठा करके आलू की बिजाई के बाद मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ खेतों में फैलाने से मिट्टी में नमी को अधिक देर तक हमारे किसान भाई सुरक्षित रख सकते हैं
0: जी।
1: यानी मल्चिंग का काम कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल।
1: अब बात आती है कि साथ ही सूखे मौसम के दौरान हुई वर्षा का भी अधिक से अधिक जल हमारे किसान भाइयों को भूमि के अंदर इकट्ठा हो जाता है और साथ ही साथ सूखे मौसम के दौरान हुई वर्षा का भी अधिक से अधिक जल भूमि के अंदर इकट्ठा हो जाता है जो पौधों की बढ़ोतरी में काम आता है। खेत में जल का सही उपयोग करने के लिए खरपतवारों को सही समय पर निकालना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा क्या होता है कि ये आलू के पौधों के साथ साथ जल के लिए जो प्रतिस्पर्धा करने के साथ साथ प्रकाश और खुराक में भी भागीदार बन जाते हैं और जो खुराक हमारे किसान भाई फसल के लिए डालते हैं वो ये खुराक जो खरपतवार होते हैं, अवांछनीय पौधे होते हैं, ये इसको चट कर जाते हैं
0: जी।
1: तो ये कुछ एक बातें थी कि जल प्रबंधन का जो हमारे किसान भाई किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बारे में। तो अब पोषक तत्वों की बात करते हैं
0: जी।
1: तो आलू की फसल में पोषक तत्वों का भी खासा महत्व रहता है, तो ये पोषक तत्वों का क्या महत्व रहता है राम जी, इसके बारे में भी किसान भाइयों को बता देते हैं
0: जी। किसान साथियों, आलू की फसल की बढ़ोतरी व अच्छी उपज के लिए 16 तत्व जरूरी है।
1: अच्छा जी।
0: इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश मुख्य तत्व है, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वितीय तत्व और मोलिब्डेनम, जिंक, तांबा, लोहा और मैग्नीज जो है वो सूक्ष्म तत्व है।
1: अच्छा जी।
0: अब किसान साथियों, आलू में उर्वरकों की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में आपको बता दें, गेहूं व धान के मुकाबले आलू प्रति समय व प्रति इकाई भूमि में अधिक शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।

0: इसलिए आलू में पोषक तत्वों की खुराक अन्य फसलों की तुलना में कहीं अधिक होती है। ये पोषक तत्व प्राकृतिक खाद से मिलते हैं, लेकिन मिट्टी में जैविक खाद की उचित मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। भारत में 76% से अधिक आलू उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में उगाया जाता है।
1: बिल्कुल जी।
0: और जहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है और जैविक कार्बन की मात्रा भी कम होती है, इन तत्वों की कमी को देखते हुए उर्वरकों की आवश्यकता जो है हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में लगे आलू के लिए आवश्यक हो जाती है।
1: बिल्कुल जी। और बात आती है किसान भाइयों की उर्वरकों की मात्रा, मिट्टी की संरचना और उसकी उपजाऊ शक्ति, फसल चक्र, पानी की उपलब्धि, मौसम और आलू की किस्म पर निर्भर करती है
0: जी।
1: आलू की बिजाई के लिए किसान भाइयों दोमट या जो बलुई मिट्टी होती है ये बहुत बढ़िया मानी जाती है। आलू 5 से 8 पीएच मान वाली मृदाओं में सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है
0: जी।
1: किसान भाइयों बात आती है कि मिट्टी की जांच आलू में किस हद तक सहायक रहती है, तो उर्वरकों की उचित मात्रा तभी आंकी जा सकती है जब मिट्टी की जांच से पता लग सके कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता है। जांच के आधार पर उचित मात्रा में उर्वरक डालने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और पैदावार सुनिश्चित की जा सकती है। ये पर्यावरण का संतुलन भी सही तरीके से बना करके रखती है।
0: किसान साथियों, नाइट्रोजन के प्रयोग से आलू के कंदों की संख्या व आकार बढ़ते हैं। पौधों की बढ़त और पत्तियों की संख्या व आकार में भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और नीचे की ओर बाद में सभी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिसके कारण आलू का आकार कम होने से पैदावार पर असर पड़ता है। दूसरी ओर नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर पौधे की बढ़वार अधिक होती है और कंद देर से बनते हैं और उसका आकार छोटा रह जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां खेती वर्षा पर निर्भर है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से नाइट्रोजन की मात्रा उपयुक्त होती है। वे क्षेत्र जहाँ पानी की व्यवस्था है, इसकी मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति बीघा हो सकती है।
1: अच्छा जी, किसान भाइयों, किसान खाद आलू के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि यूरिया आलू की फसल में कम उपयुक्त होती है। बुआई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन से अधिक इस्तेमाल बीज कंद के अंकुर को हानि पहुंचा सकता है। बुआई के समय किसान खाद और मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया खाद का इस्तेमाल करना आपको काफी लाभदायक सिद्ध होता है। वे क्षेत्र जहां फसल वर्षा पर आधारित है, आलू की फसल में नाइट्रोजन का 2/3 भाग बुआई के समय और 1/3 भाग मिट्टी चढ़ाते समय देने से आलू की अच्छी फसल आप ले सकते हैं
0: जी।
1: तो किसान भाइयों, ये थी कार्यक्रम में कुछ एक जानकारी आलू में जल एवं पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में। तो राम जी, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे
0: जी। तो किसान साथियों, आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं चंपा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत
1: जी।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत, अब निश्चय ही आपको इंतजार होगा जानकारी पूर्ण बातचीत का, जिसका विषय है पशुओं में संतुलित आहार। और इस बातचीत में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज, और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं देवेंद्र कुमार
1: जी।
0: तो किसान साथियों, आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं इस जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
2: किसान भाइयों, रोजाना की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जानकारी पूर्ण विषय, पशुओं में संतुलित आहार। इस विषय पे हमें अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर पंकज कुमार भारद्वाज। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। पशुओं की देखरेख करने वाले जो किसान और बागवान भाई बहन है, उनसे यही निवेदन रहता है कि अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें और उन्हें समय समय पर भोजन और पानी देते रहें। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भोजन की श्रृंखला में यदि हम बात करें संतुलित आहार की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या होता है।
3: सबसे बड़ा जो एक, जिसमें कि किसानों का सबसे ज्यादा पैसा पशुओं पे लगता है, वो है पशु आहार का। पशु आहार लगभग 75% जो भी खर्चा किसान करते हैं वो पशु आहार पे करते हैं, तो ये विषय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशु आहार से और संतुलित पशु आहार के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो आहार है जिसमें कि पशु की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और पूरी ज़रूरतें वो हैं जैसे जिसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, एनर्जी, इस तरह की सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूर्ण रूप से उसमें प्राप्त हों, उस फीड में हों, जिससे कि पशुओं में कोई भी तरह की कमी, दूध उत्पादन में कोई कमी, या उनके पाचन तंत्र में कोई खराबी, या फिर स्वास्थ्य को लेके भी कोई समस्या ना आए।
2: अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूध देने वाली गाय या भैंस के लिए संतुलित पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं, जो हमारे किसानों के लिए जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
3: देखिए, सबसे पहले जो पशु पालक है उसको ये जानना जरूरी है कि उसके पशु की जरूरत क्या है, और ज़रूरत को जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस पशु का वज़न। उसके वज़न के अनुसार उसकी जो ज़रूरत होती है, उसके खाने की जो ज़रूरत होती है, वो तय होती है। अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे लगभग जो हमारे पशुओं का वज़न

0: है वो 300 किलो के आसपास होता है। तो एक 300 किलो के वजन का पशु है तो उसको अगर वो दूध भी नहीं दे रहा है उस कंडीशन में भी आपको प्रतिदिन 10 से 15 किलो हरा चारा, लगभग 3 से 4 किलो सूखा जैसे कि भूसा है या लोग कई जगह पराली देते हैं, और साथ में 1 से 1.5 किलो के आसपास जो अनाज या फीड जो बाजार में होता है या किसान अपने घर पे तैयार करता है वो प्रतिदिन उसको चाहिए। तो ये तो उसकी जो मेंटेनेंस या उसको शरीर को उसको जो चलाना है उसकी ये जरूरत है। इसके अलावा जब वो दूध में आ गया या वो गर्भ अवस्था में है तो इन दोनों कंडीशन में उसकी जो जरूरतें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि अब गर्भावस्था में हमारे हिमाचल में मैं जैसे घूमता हूं तो मुझे दिखता है कि लोग दाना और फीड जो है वो कम कर देते हैं, जबकि इस तरह की कुछ भी किसानों को करना वो पशु के लिए भी नुकसानदायक है और साथ में जो उसके अंदर जो पल रहा बछड़ा बछड़ी है उसके लिए भी ये नुकसानदायक है। तो मेरा उनसे ये बहुत निवेदन है कि जब भी पशु गाभिन है और खासकर प्रसव के 2 महीने जब बचे हैं तब उनको जो ये जो फीड है अगर वो आधा किलो 1 किलो कोई दाना घर में दे भी रहे हैं उसमें भी आधा किलो 1 किलो बढ़ा दें, इससे वो पशु जो है वो प्रसव बहुत आसानी से देगा, उसका जो बछड़ा बछड़ी जो है वो बहुत तंदुरुस्त पैदा होगा, और उससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि जो दूध जो है वो अगले जो उसका जो लैक्टेशन साइकिल या दूध का जो काल है वो भी बड़ा होगा और दूध की मात्रा उसे बहुत अधिक मिलेगी।
1: अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जन्म से लेकर गर्भावस्था की शुरुआत तक की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है और पशु पोषण की कमी के कारण आमतौर पर डेयरी पशुओं को क्या समस्याएं आ सकती है।
0: देखिए ये भी बहुत अच्छा आपने विषय उठाया है जो कि यहाँ मैं जहाँ जहाँ पे भी पशुपालकों से मिलता हूँ उनको ये बताता हूँ कि जो उनकी जो भी बछड़ा बछड़ी जो पैदा हो रहा है उसको एक बढ़िया नस्ल में तैयार करना है तो उसका जो समय है वो पहले दिन से है, उनके पैदा होने के दिन से जो हम मैनेजमेंट करना शुरू करते हैं वही उनको आगे जाके एक बहुत बढ़िया नस्ल की गाय में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है या बछड़ा बछड़ी जो पैदा हो रहा है उसको हम क्या अपने वहां पे पोषण देते हैं। तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है पहला दूध, जिसे हम कोलस्ट्रम बोलते हैं और भी कई तरह के नाम लोग जानते हैं। पहला दूध होता है बहुत गाढ़ा होता है। इस दूध का जो बच्चे के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि बीमारी से लड़ने की कई सारी जो दवाइयां हैं या समझ लीजिए एंटीबॉडीज हैं वो बछड़े को उसी में मिल जाती हैं। पहला दूध जो है वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहले 1 घंटे में अगर हम बछड़े को पिला दें तो वो बीमारी से लड़ने की जैसे दस्त की बीमारी बछड़ों में या बछड़ी में बहुत होती है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने इससे पहले बताया कि जो गाभिन पशु है उसके जो 2 महीने पहले का जो समय है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ब्याने के बाद का जो 1 महीने का समय है वो भी बहुत जरूरी है। मैं अब बता कई लोग जो हमारे पशुपालक हैं वो काफी दिनों तक फीड जो होता है वो पशु को नहीं देते हैं ब्याने के बाद भी, उसका बहुत बड़ा नुकसान पशु को होता है जिसका कि असर उसके अगले जो गर्भकाल में पड़ता है। जो पहले जो 60 दिन 2 महीने होते हैं पशु के दूध बढ़ने का वो काल है, अगर उस दौरान हम सही मात्रा में उसको अनाज फीड या जो भी घर में खल बिनौला इसका मिक्स करके या चोकर के साथ जो देते हैं उससे उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, वो लंबे समय तक दूध देगा और हमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्याएं पशु में नहीं आएंगी।
1: तो डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि गाभिन जो गाय या फिर भैंस जो होती हैं उनके लिए फीड या फिर अनाज की आवश्यकताएं क्या क्या होती है और साथ ही उन्हें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता पड़ती है।
0: जैसे कि मैं बता रहा था कि गाभिन पशु को जब आप एक मेंटेनेंस पशु के लिए राशन जो देते हैं वो हम बताते हैं कि लगभग हरे चारे और भूसे या जो भी दे रहे हैं साथ में उसके साथ 1 किलो के आसपास अनाज हम बताते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो जब वो गर्भावस्था में आ जाता है उस दौरान उसको 1 किलो के बजाय लगभग 2 से 2.5 किलो के आसपास अनाज और या अखल का मिक्स करके दिया जाना चाहिए। और इसको बनाने की विधि भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई फीड घर पे कोई बनाना चाहता है या कोई भी पशुपालक अपने घर पे फीड तैयार करना चाहता है बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं से ही एक बहुत संतुलित आहार बनाया जा सकता है जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जिसे जो हमारे पशुपालक हैं वो नोट भी कर सकते हैं कि घर में जैसे मक्की, गेहूं, ये सब हमारे हिमाचल में उपलब्ध है, तो एक

0: संतुलित आहार में अगर एक क्विंटल फीड या 100 किलो आपने बनाना है तो जो अनाज की जो मात्रा होती है वो लगभग 40 से 45 किलो के आसपास होनी चाहिए। तो 40 से 45 किलो आप अनाज जो है उसमें आप गेहूं ले सकते हैं, आप मक्की ले सकते हैं, या चावल भी जो है वो कुछ मात्रा में लगभग 10 से 20 किलो चावल जो है वो भी आप अनाज का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो अलग एक हमें चाहिए वो चाहिए खलों का भाग। खलें किस लिए चाहिए? वो प्रोटीन की मात्रा को पूरा करती हैं। हमारे यहाँ पे सरसों की खल, बिनौला की खल बड़ी आसानी से उपलब्ध है और एक क्विंटल फीड में आप लगभग 25 किलो के आसपास खलों का भाग डाल सकते हैं। बढ़िया है बिनौले की खल आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें फाइबर होता है जो पशु के पेट को बहुत अच्छा रखता है, साथ में प्रोटीन की कमी को भी पूरा कर देता है। सरसों की खल भी उतनी ही मात्रा में लगभग आधा आधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में अगर आप चोकर भी 20 किलो के आसपास मिला देंगे तो एक बहुत बढ़िया आहार आपके पास तैयार हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आपकी बातों से यह लगता है कि बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमारे किसान और बागवान भाइयों बहनों को पता नहीं होती है। जैसे कि आपने गाय के ब्याहने से पहले के भोजन के बारे में बताया, उसके बाद गाय के ब्याहने के बाद के भोजन के बारे में बताया, तो आहार जो है हमारे पशुओं के जीवन में एक मुख्य आधार है और वो एक मुख्य भूमिका भी रखता है। तो इसी कड़ी में अब आपसे आगे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी अन्य चीज़ें हैं जो हमारे किसान और बागवान भाई जो जो पशुपालन करते हैं उनको पशुपालन करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए।
0: बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हमारे पशुपालक जानकर भी कई बार उनसे गलती हो जाती है। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नमक। देखिए नमक की कमी से भी हमारे यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि गर्भावस्था धारण करने की जो समस्या है वो नमक की कमी से भी हो जाती है। इसमें अगर कोई एक किलो नमक मिला दे एक क्विंटल फीड में तो उसकी जो नमक को लेके जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। साथ में एक और जो बहुत जरूरी है जो पशुपालक नहीं करते हैं वो होता है मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल। मिनरल मिक्सचर वो चीज है जिसमें बहुत सारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, ये ऐसे लवण तत्व हैं जो बहुत जरूरी हैं पशु के दूध को बढ़ाने में, उसके गर्भावस्था के लिए धारण करने में और शरीर को एक सही स्वस्थ रखने में। तो इनकी कमी से बहुत सारी समस्याएं पशुओं में आती हैं और हमें उनका बाद में जो होता है पशुपालक को आर्थिक नुकसान होता है। तो ये बहुत एक, अगर आप बाजार में जाएंगे बाजार में भी बहुत सस्ते दर पर कई तरह के मिनरल मिक्सचर मिलते हैं। अगर पशुपालक अपने यहाँ जैसे एक क्विंटल फीड बना रहा है एक किलो के आसपास, उसमें अगर ये मिनरल मिक्सचर मिला दे तो ये बहुत सारी समस्याएं उसकी अपने आप ही हल हो जाएंगी। पशु चिकित्सक का कार्य हमारा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो ये तो ऐसी बातें थी जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए जब आप पशुपालन करते हैं।
0: इसके साथ मैं एक चीज और इस सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक गर्मी के समय में पानी की जो कमी है वो भी पशु पोषण का एक बहुत बड़ा रूप है जिसे कि पशुपालक को ध्यान देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके वो पानी को बढ़ाएं इस समय, क्योंकि पशु में पानी की कमी से भी दूध का उत्पादन जो है काफी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और स्वास्थ्य जो है वो गिरता है। तो इसलिए पानी भी पशु पोषण में उतना ही जरूरी है जितना कि फीड या चारा हम दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब देखिए जानकारी तो हो गई कि पशुओं में संतुलित आहार क्या होता है और किस तरह के पशु को आप किस तरह का संतुलित आहार दे सकते हैं। अब अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे पशुपालकों के लिए कोई संदेश यदि आपके पास हो तो अवश्य दें।
0: देखिए मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पशुपालकों के सामने रखने की कोशिश की है। बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं कि घर का जो वेस्ट होता है, जो खाना बच गया या जो बर्बाद हो गया, वो हम क्या करते हैं पशुओं के सामने दे देते हैं। तो उससे बहुत सारी समस्याएं वो घूम फिर कर हमें मनुष्यों को ही आती हैं, क्योंकि वो जो दूध जो वो पशु पैदा कर रहा है उसको पीना हमने ही है। तो उस दूध की क्वालिटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी इस तरह का जो चीज़ हम खुद नहीं खा सकते, कोई अनाज जो है वो जो हमारे खाने लायक नहीं है, उसको पशुओं के खाने लायक भी हमने नहीं समझना है। तो पशु पोषण और चीज़ें मैंने जो बताई उन पे आप अमल करें, साथ में जो भी आप घर का कोई अगर वेस्ट होता है उसको भी पशुओं के सामने, ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर फंगस लग गई, कोई फफूंद लग गई, वो आपने पशुओं के खाने में नहीं इस्तेमाल करना है। और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे बहुत सारी समस्याएं आपके पशुओं की अपने आप में समाप्त हो जाएंगी और आप बहुत बढ़िया दूध अपने आप प्राप्त करेंगे।
1: तो किसान भाइयों, आज का हमारा जानकारीपूर्ण विषय था

0: पशुओं में संतुलित आहार, इस विषय पर हमें अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी के साथ साझा की, इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जानकारी का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था पशुओं में संतुलित आहार। डॉक्टर पंकज भारद्वाज से जानकारी हासिल कर रहे थे देवेंद्र कुमार। तो किसान भाइयों, जानकारी भी हो गई, अब जानकारी के बाद कार्यक्रम में आपको इंतजार होगा एक और लोकगीत का। तो राम जी, क्यों ना किसान भाइयों को सुनवा देते हैं लोकगीत।
2: जी किसान साथियों, आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं लेखराम पाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
1: जी।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना कार्यक्रम में लोकगीत। तो किसान भाइयों, अब चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हम आपको जानकारी दे देते हैं कल कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास उसके बारे में। किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में। कार्यक्रम में हर रोज की तरह लोकगीत भी आपको सुनाए जाएंगे और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा मौन पालन में स्वरोजगार की संभावनाएं। तो किसान भाइयों, ये था आज का कृषि जगत कार्यक्रम। इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न होता है। हमें दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्र के साथ ही FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप DTH सेवा पर भी सुन सकते हैं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान व विकास गतिविधियां विश्वविद्यालय के इसी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी सोमवार 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन सेवा वितरण में सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सौदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश में शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनावों में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश सहित प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगाई गईं। इन अदालतों में 140 बेंचों के समक्ष 110,260 मामले लाए गए, जिनमें से 65,793 मामलों का निपटारा किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महाशिव आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवस पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावना

0: और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
1: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है, और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 10 मई को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एमएसएमई व स्टार्टअप्स कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
2: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एमएसएमई को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो डीएफओ ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं एमएसएमईज के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 डीएफओ यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
0: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 1 उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ ही FM शिमला पर भी एक साथ रिले किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और FM शिमला से आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
1: एफएम।

आकाशवाणी एफएम शिमला आपने ट्यून किया है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8 बजे हैं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने सफ़र में आप सबका स्वागत है। और आज का ये रात्रि प्रसारण का सुरमई सफ़र आप तय करेंगे शैलजा चौहान के साथ। दोस्तों, बीते पलों की कुछ मीठी यादें जो कभी धुंधली नहीं पड़ती, उन्हीं यादों को हम सुरों में पिरो कर लाए हैं। आइए फिर से जी लेते हैं वो पुराने दिन उन्हीं मधुर धुनों के साथ। ऐसे ही अनमोल नगमों के साथ हाजिर है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ। फिल्म है दो उस्ताद, कमर जलालाबादी के बोल।

लीजिए दोस्तों अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मदर इंडिया फिल्म से, गीत शकल बादायुनी के, संगीत नौशाद का।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोस्तों, अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं सिंदबाद अलीबाबा अलादीन फिल्म का ये गीत, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, एस एच बिहारी के बोल रवि का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी लाभवाणी।

0: इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: प्रोग्राम भूले बिस्तरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोस्तों अब समय है एक और सुरेली

दोस्तों, गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं शारदा फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत पेश है तलत महमूद की आवाज में, फिल्म है पतिता, गीत शैलेंद्र के और शंकर जय किशन का संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए अनारकली फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, श्री रामचंद्र का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे भूले बिस्तरे गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। दोस्तों, इस सुहाने समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिल को छू लेने वाले यादों से भरे हुए गीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में वंश फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, आनंद मिलन का संगीत।

दोस्तों अब आ रही है एक और खूबसूरत नगमे की, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। फिल्म है जान तेरे नाम, रानी मलिक के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

दोस्तों फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता

0: के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला

0: कर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
2: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the state government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subrata Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:15 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम एक फिल्म से। दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है लव इन टोक्यो।

रानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजा।

दोस्तों ये फिल्म 1966 में पर्दे पर आई और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा किया गया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। फिल्म में लीड रोल में आशा पारेख और जॉय मुखर्जी हैं। इसके साथ महमूद, शोभा खोटे, धूमल, मास्टर शाहिद, ललिता पवार, अति सेन, मोहन चोटी, मदन पुरी, उल्लास, तरुण बोस, लता बोस जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हंसरत जयपुरी ने। दोस्तों 1966 में फिल्म के सभी गाने चार्ट बूस्टर पर सफल रहे।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। और दोस्तों आज की हमारी फिल्म है लव इन टोक्यो। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से जापान में टोक्यो ओएनो गिंजा, टोक्यो टावर, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिरोशिमा सहित विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इस फिल्म में महमूद को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका के लिए नामांकित किया गया था। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म से।

दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की फिल्म लव इन टोक्यो। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। दोस्तों, हर गीत किसी न किसी एहसास का आईना होता है, कहीं मुस्कुराहट, कहीं इंतज़ार, तो कहीं दिल की अनकही आवाज़। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है स्वीकार किया मैंने फिल्म से। निदा फैजली के बोल हैं, उषा खन्ना का संगीत।

दोस्तों इस खूबसूरत गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल खय्याम का संगीत।

0: बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। दोस्तों, गीतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और हर नगमा जो है दिल की किसी न किसी बात को ज़रूर बयां करेगा। और आपको सुनवाने जा रहे हैं अब हम स्वामी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, अमित खन्ना के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

कभी मुस्कान बनकर तो कभी याद बनकर ये गीत हमेशा हमारे साथ रहे हैं दोस्तों। आइए सुनते हैं एक और दिलकश नगमा स्वयंवर फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन। दोस्तों, प्रोग्राम का अगला खूबसूरत गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म है दिले नादान, नक्श ललयालपुरी के बोल खयाम का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं उत्सव फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और लता मंगेशकर की। वसंत देव की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। रात के 10 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलें। दोस्तों, रात की खामोशी, चांदनी का हल्का सा नूर और दिल को छू लेने वाली गजलों का साथ, इन्हीं हसीन लम्हों के साथ सज चुकी है गजलों की महफिल। इस महफिल का आगाज़ कर रहे हैं एक खूबसूरत गज़ल के साथ, जिसे आवाज़ दी है हरिहरन ने,

0: दोस्तों, कार्यक्रम की बाकी की गजलें आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं गजलों का। सांस की नरमी, लफ्जों की मिठास और एहसासों की रवानी, इन्हीं रंगों से सजी है हमारी आज की यह महफिल। सुनिए एक और दिलनशी गजल पंकज उदास की आवाज़ में।

दोस्तों, हर शेर जैसे दिल की दबी हुई बात को आवाज़ दे जाता है। लीजिए, पेशे खिदमत है अगली गज़ल, जिसे गाया है आशा भोसले और तलत अजीज़ ने।

हर गज़ल अपने साथ कोई ना कोई जज्बा ज़रूर लाती है, कहीं मोहब्बत, कहीं तन्हाई, तो कहीं मीठी सी याद। आइए अब सुनते हैं अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे गजली 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ. रात के 10:30 हुए हैं. लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे. आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे. नगमे वही अंदाज वही और यादों का वो ही सुनहरा दो. दिलों पर राज करने वाले वो सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही ताज़ा है जितने अपने दौर पे थे. पुरानी फिल्मों के अमर गीत, महान गायकों की दिलकश आवाज़ों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में. फिल्म दाग, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

दोस्तों, पुराने गीतों का जो मिठास होती है वो कभी भी कम नहीं होती। हर बार सुनने पर ये और भी अपने से लगते हैं। सुनते हैं अब अगला नगमा। गुमराह फिल्म से आवाज़ें आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।

दोस्तों, संगीत का ये सुहाना सफ़र चलता रहेगा जहां हर गीत अपने साथ यादें लेकर आता है। पेश है अगला प्यारा सा गीत दो रास्ते फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

दोस्तों हर दौर बदल गया, लेकिन इन गीतों का जादू आज भी बरकरार है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए अगला सदाबहार नगमा, जोनी मेरा नाम फिल्म से, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुरों की मिठास और पुराने गीतों का जादू, यही तो है सदाबहार नगमे की पहचान। आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत सच्चा झूठा फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यूं ही तुम मुझसे

0: दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म है चरस, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

दोस्तों सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। रात के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के